हाँ फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ऐ कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर। असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा आई पाइप दे ढग ब 4-6-9-12 इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03015541-456 आई तौकीर अहमद 03016-1623-793।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
4: आई मोहम्मद उमर गोरी 0319 1557724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केडीएन
1: आईएसपीआर ऑपरेशन सिंदूर बाबत तैयार कल भारतीय दतावीसी फिल्म के हकीकतन के उत्तर करार दे छो आईएसपीआर पारा जारी कल पदराई में है मुआर के हक के एक साल गुजरने बावजूद भारत हकीकत के मुंह देण का इनकारी है। ऑपरेशन सिंदूर बाबत तैयार कल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकीकतन के उत्तर ड्रामाई ए प्रोपोगेंडा से बधल है। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबत तारीख बिगाड़े पेश कर रो है। पहलगाम वाक्य जा जवाबदार 28 जुलाई से मारजी वाया तो भारत 7 मई से कंखे सजा डनी। फिल्मी अंदाज में पेश कल यह समूरी दास्तान कूड़ से बधल है। भारत मारकाए हक में नाकामी के तस्लीम कर बदरा तारीख पैंजी मर्जी मुताबिक पेश कर कोशिश कई। मारकाए हक दौरान पाक फौज भारतीय जारियत के नाकाम बनाईंदे 8 भारत जहाज किराया ऑपरेशन बनियान अल मसूस दौरान 28 भारतीय फौजी तस्बियात के कामयाबी से निशानो बनाए तबाह किया।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओमान मथा हमलन की धमकी दई छी। फाजदार इनकलाब से सीधी रीत राबतन की भी तस्दीक। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू डींदे डोनाल्ड ट्रंप है तो जैसे आपने हरमुस खोलने की कोशिश में ओमान रुकावट बणो तो अमेरिका उन सख्त बमबारी कद। अमेरिका वट अब हथियार जहा वसी जखीरा मौजूद है। अमेरिका इन वक्त ताई जेतरा हथियार इस्तेमाल कयान उ मौजूद हथियार के मजमू जखीरे की भेट में तमाम घट आन। हाँ ईरान के हथियार फिटा करण अछो झंडो ऊंचो करण घुर्जे। ईरान से जारी तकरार खत्म करण लाय का तकड़ ना है। मुझे इंतजामिया ईरान के पासदार इनकलाब से सीधे राबते लाय एक बैक चैनल भी कायम किया है।

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स,

0: एक्सप्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आइन, हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो, याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी, माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो, गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ए औरतन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो, राबते लए 03011 96 851।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी,
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
4: उम्मीद के दिए जलते हैं,
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03018-65453।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
6: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर,
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836।
9: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कार्रवाइयों नव दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरिए मौजूद सिक्योरिटी फोर्सिस ज्यारत हरनाई सोराब में गुजी इतलाते ज्यारत हरनाई विच में जाबलू सिलसिले में गुजी इतलाते ऑपरेशन कयो जैं दौरान अठ दहशतगर्द मारजी वया। सोराब के इलाके में हाजिका में एक दहशतगर्द जहनम भेड़ो मारजी वेल दहशतगर्दन वटां वड़ी मिकदार में हथियार हथ किया वया। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ्तारियों के पाकिस्तान से जोड़न जो इल्जाम रद्द कर छो। भारतीय घरों वजीर जो दावाओं बेबुनियाद करार। परदेही खाते के तर्जुमान जो चवण है तो भारतीय गिरफ्तारियों पाकिस्तान ते इल्जाम सिर्फ अंदरूनी सियासी मकसद हासिल करण लाए प्रोपोगेंडा आहिन। डीजीआईएसपीआर के समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधन से 6,150 शागिर्दन शागिर्दारन सा वेहक। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कौमी सलामती दहशतगर्दी इतलाती जंग सोशल मीडिया के चैलेंजेस से गालू कयू शागिर्दन के सवालन जा दलील से जवाब दिना।

0: एसपीआर ऑपरेशन सिंदूर बाबति तैयार कयल भारतीय दस्तावेजी फिल्म के हकीकतन जो उबतड़ करार ॾेई छॾियो। एसपीआर पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त मारकाए हक़ खे हिकु साल गुज़रण बावजूद भारत हकीकत खे मुंहुं ॾियण खां इनकारी आहे। ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकीकतन जे उबतड़ ड्रामाई ऐं प्रोपोगेंडा ते ॿधल आहे। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबति तारीख़ बिगाड़े पेश करे रहियो आहे। पहलगाम वाके जा जवाबदार 28 जुलाई ते मारिजी विया त भारत 7 मई ते कंहिंखे सज़ा ॾिनी। फिल्मी अंदाज में पेश कयल इहा समूरी दास्तान कूड़ ते ॿधल आहे। भारत मारकाए हक़ में नाकामीअ खे तस्लीम करण बदिरां तारीख़ खे पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ पेश करण जी कोशिश कई। मारकाए हक़ दौरान पाक भारत फ़ौजी जाहिरियत खे नाकाम बणाईंदे 8 भारतीय जहाज किराया ऐं ऑपरेशन बनियल अलमरसूस दौरान 28 भारतीय फ़ौजी तनसिबियात खे कामयाबी सां निशानो बणाए तबाह कयो। अपने हर्मुज पार करे निकरंदड़ जहाज ते हमले जी इतला। हमले जो हिकु ॼणो मारिजी वियो। बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन चयो आहे त जहाज खे हिकु अणॼातल नोइत जे निशानो बणायो वियो आहे। हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो ऐं जहाज जे इंजन रूम खे नुक़सान पहुतो। ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्की किरदार अदा करण लाइ तयार। तुर्की जे सदर रजब तैयब अर्दगान ऐं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप विच में टेलीफोनिक राब्तो। रजब तैयब अर्दगान चयो आहे त ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्की किरदार अदा करे रही आहे। ऐं चंबड़ भरिसां नौजवान जो फाओ खाधल लाश हथ घोट बचल। लुंडवासी 30 वरनि जे सोनू कोली जो फसुल में वण में फाहो खाधल लाश मिलियो। वारसन जो चवण आहे त नौजवान राति घरां निकिरी वियो हो। सुबुह जो वण में फाहो खाधल लाश मिलियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
7: यार मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
7: यार

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: सखर सिंध का राज दुलारा शहर,
1: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर।
0: सखर के हर अंदाज से बसी आवाज, जीए सखर FM 88, सखर की आवाज।
1: जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम। रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आयशे रुखसार, सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद हो बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एक साथ एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हो बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम। आपका मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। तो प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करें तो 11:23 जो कि पाकिस्तान के मेरे वक्त तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है, और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बट अलग देन एवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस ये खुदा खैरियत है मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत है मतलब वो लोग जिन लोग यहाँ सालगिरह हैं उनको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न सैटरडे हैव अ बजे टू यू। इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। तो मेरी आवाज जिन गलियों और शहरों, शहरों, शराहों, वादी और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घर और बाजारों, छोटी बड़ी कारों में परेशानों, ये आगे लोगों हजारों में सुनी जा रही है तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन वसहलन, मरहबा बखैर, आगे ले जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह, बोंजोर शानी हाँ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है। तो प्रोग्राम में इंक्लूड करने जा रहे हैं, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

next caller. Hello. ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई है. 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को इंटरटेन किया जा रहा है.

0: ओके जी, एक और कॉलर लेते हैं और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो। ओके जी, आवाज क्यों नहीं आ रही है? 0300-01-34-88 के ऊपर आप लोगों की कॉल्स को इंटरटेन कर रहे हैं हम, और कॉल्स का कुछ इशू मुझे लग रहा है। खैर, हम एक और ट्राई करेंगे। हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हो? शाजिया कहाँ से बात कर रही हो?
1: लाड़काना।
0: लाड़काना से बात कर रही हो। शाजिया, गाना सुनाओगी? मायरा खान का नूरी चला दें, अभी चलाते हैं। नूरी किसी को डेडिकेट करना है?
1: किसी को नहीं,
0: किसी को भी नहीं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हम नूरी को प्ले करेंगे।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03075 3592120।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर,
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।

आज का जो टेम्परेचर है वो कुछ इस तरीके से है कि काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो गए, ठीक है, ये कहना है। काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो गए, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। और जब हम अगले घंटे में वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा बोलो तो माने, ठीक है, उसमें आपसे ये हम सुन रहे होंगे और जो बंदा अच्छा अच्छा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को। तो आपने कहना है कि काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो गए।

गाना हमारा ऑलमोस्ट पूरा पूरा खत्म हो चुका है. सो हम क्या करेंगे, हम एक और गाना प्ले करेंगे एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय हसन एंड रोशन. तो इसको हम सुनेंगे और इंजॉय करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे से प्ले करेंगे एंड यहाँ से हम इसको सुनना स्टार्ट करेंगे. स्टे ट्यून्ड, इट्स अ कमर्शियल ब्रेक, साथ में न्यूज ब्रेक.

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रैनुलर।
3: दरख्वास्त में दाखिल कराए छी है नेपरा मौजूद CCPA की दरख्वास्त बुधड़ी 27 अगस्त से थी मंजूरी की सूरत में वापेदार GST समेत 41 अरब रुपये जो इजाफो कार पव ऑपरेशन रदुल फितना 3 तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कार्रवाइयों 9 दहशतगर्द मारज वाया सिक्योरिटी जरिए मौजूद सिक्योरिटी फोर्सिस ज्यारत हरनाई है सोराब में गुजी इतला थे ज्यारत हरनाई विच में जाबलू सिलसिले में गुजी इतला थे ऑपरेशन कर जै दौरान 8 दहशतगर्द मारज वाया सोराब के इलाके हाजिका में भी 1 दहशतगर्द जहनम भेड़ो मारज वे दहशतगर्दन वटा बड़ी मकदार में हथियार हथ किया गया पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ्तारियों के पाकिस्तान से जोड़ने जो इल्ज़ाम रद्द कर छोड़ो भारतीय गृह वजीर जूं दावाओं बेबुनियाद करार परदेही खाते के तर्जुमान जो चवण है भारतीय गिरफ्तारियों आए पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ अंदरूनी सियासी मकसद हासिल करने ला प्रोपेगेंडा है DGISPR शिप 2026 में 21 हंधन के 6150 का शागिर्दन शागिर्दानी से वेक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कौमी सलामती दहशतगर्दी इतलाती जंग ए सोशल मीडिया के चैलेंजेस से गालू कयूं शागिर्दन के सवालन जा दलीलन से जवाब दिना

0: आईएसपीआर ऑपरेशन सिंदूर बाबत तैयार कयल भारतीय दस्तावेजी फिल्म के हकीकतन जो उबतर करार डेई छो आईएसपीआर पारा जारी कयल पधराई में मौका हक के एक साल गुजरण बावजूद भारत हकीकत के मुंह डेण का इनकारी है। ऑपरेशन सिंदूर बाबत तैयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकीकतन जो उबतर ड्रामाई ए प्रोपोगेंडा ते बधल है। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबत तारीख बिगाड़े पेश कर रो है। बेलगाम वाक्य जा जवाबदार 28 जुलाई से मार वाया भारत 7 मई से कंखे सजा डी। फिल्मी अंदाज में पेश कयल यह समूरी दास्तान को उगते बधल है। भारत मारका हक में नाकामी के तस्लीम करण बदर तारीख पैंजी मर्जी मुताबिक पेश करण की कोशिश कई। मारका हक दौरान पाक फौज भारतीय जारियत के नाकाम बनाईंदे 8 भारतीय जहाज किराया ऑपरेशन बुनियान अलमसूस दौरान 28 भारतीय फौजी तस्वीर के कामयाबी से निशानो बनाए तबाह कर। आबना हमज पार करे निकरंदर जहाज ते हमले जी इतला हमले जो एक जनो मारजी वयो। बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन चयो इतला मिलो आहे त जहाज के एक जन जातल नोत जे प्रिज टाइकल जा सा निशानो बनायो वयो आहे। हमले में एक जनो मारजी वयो और जहाज जे इंजन रूम के नुकसान पहुतो। ईरान अमेरिका छिकताण घटाण में तुर्की किरदार अदा करे रहण लाइ तैयार आहे। तुर्की जे सदर रजब तैयब एर्दोगान ऐं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विच में टेलीफोनिक राब्तो थियो आहे। रजब तैयब एर्दोगान चयो त ईरान अमेरिका छिकताण घटाण में तुर्की किरदार अदा करण लाइ तैयार आहे। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिल करण मुलाकातों बहाल करण बाबत केस की बुधनी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराई में बुधनी करे रही है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम 3 रुकनी बेंच जो हिस्सो है। केपीके जो वडो वजीर सोहेल आफरीदी अदालत में पुर उम्मीद।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर
0: कराची में न्यूज़।

0: मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03003385।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

लगी जी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ वापस आ चुके हैं हम. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन टू ये एफएम रेडियो नेटवर्क. एंड मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. और अब हम अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज बोलो तो मानी. बोलो तो मानी में होगा ये कि एक टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखाएंगे.

आज का टंग टिस्टर ये है कि आपने कहे कि दिखाना है काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब, कमाल की करारी हो गई। ठीक है, काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब, कमाल की करारी हो गई। इसको कह के दिखाएंगे और जब आप ये कहेंगे तो हम देखेंगे कि कौन ज्यादा अच्छा अच्छा और सही सही कहता है, और जो ज्यादा अच्छा अच्छा और सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा हमारे सेगमेंट को। ठीक है जी, तो देखेंगे हम कि कौन अच्छा अच्छा और सही सही बोल रहा है, कह रहा है, कह के दिखा रहा है। ठीक है तो जी, कहाँ गया हमारा गाना? आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, जिसके ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं मुझे। एंड कॉल करने के साथ साथ आप लोग मुझे सिंपली कमेंट और मैसेजेस भी कर सकते हैं। सिंपली कमेंट और मैसेजेस करने के लिए आप लोग 8881 पे मुझे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग मुझे फेसबुक के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। और गाने को हम चेंज करेंगे हाथ के हाथ और एक और गाना प्ले करेंगे, फिर उसके बाद एक और गाना प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि गानों की कमी बिल्कुल भी नहीं है हमें।

0: जी कॉलर है मेरे लाइन पे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। जी हेलो
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं।
1: वालेकुम सलाम बाजी, रंजन कोरी मीरपुर खास कोरीकोट से।
0: अरे वाह क्या बात है, पहली दफा कॉल कर रहे हैं।
1: मैं कर रहा हूँ जिस पे वो पुर लगाओ गाना सुनाओ उस पे एफएम पे कॉल कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, मतलब पहली दफा कॉल की है ना।
1: जी
0: ओके, तो गाना सुनाना है आपने, टंग ट्विस्टर नहीं सुनाना।
1: नहीं नहीं गाना सुनाना है, जब तक लगा रहा हूँ आप जाके लगे।
0: चले फिर सुना दे,
1: हिंदी में सुनाऊ। दिल न जा मालिक हो अल्लाह मुझे यार जी पार कर भाई।
0: बस
1: हाँ बस इतना था।
0: ओके कुछ और कहना है।
1: हाँ बस दोस्तों को डेडिकेट करना है।
0: ओके कीजिए जल्दी से।
1: बचाओ खास के लिए और न्याज जूने जो वते लो इमाम बख्श जूने जो वते लो सपनों जूने जो फरान डॉक्टर डॉक्टर लाल चंद।
0: ओके जी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और
2: मैं लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखूं।
0: 03000113488

0: नेक्स्ट कॉलर लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे कौन है कहाँ से. जी हेलो,
1: वालेकुम सलाम,
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: की बाजी हचरी गुलाम
0: साहब. ओके, प्रोग्राम सुनते हैं भाई?
1: जी जी भाई, प्रोग्राम सुनता हूँ, सारा प्रोग्राम जो है.
0: सारा प्रोग्राम सुनते हैं तो टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे
1: जो बाजी मैं गाना सुनाता हूँ नूरजान का, नहीं आता मुझको गाना
0: सुना दे.
1: गायक दुनिया तुम रे सुरीले रंग में निराले रंग में, गायक दुनिया तुम रे.
0: ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. और गाना सुनाने वाला सेगमेंट खत्म हो चुका है भाई लोगों, तो जितने भी लोग आ रहे हैं गाना सुना रहे हैं, गाना नहीं सुनाना, टंग ट्विस्टर बोलना है. आपने कहना है कि काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो गए. ठीक है, एक और कॉलर इंटरटेन करेंगे. हेलो, अस्सलाम
2: वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? रुखसार बात कर रही है, मीरपुर खास से. रुखसार कैसी है?
2: मेरी एक रिक्वेस्ट थी तमाम लिसनर से, आप समेत के जो जो मुझे सुन रहा है, प्लीज मेरे हक में दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ.
0: ओके, ठीक है, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे और बहुत जल्द करे. आमीन
2: आमीन आमीन.
0: और कुछ कहेंगी?
2: याद रखे. नहीं, बहुत शुक्रिया. मैं कब से आपकी कॉल लगाना चाह रही थी लेकिन कॉल लग नहीं रही,
0: कॉल नहीं लग रही थी. चले अब लग गई एक कॉल. और मुझे बताओ कि प्रोग्राम सुनती हो रुखसार?
2: रोजाना
0: सुनती हूँ.
2: परेशान थी,
0: चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बहुत जल्दी परेशानियाँ दूर करेगा. और वो कहते हैं ना कि परेशानियाँ अपना हल साथ लेकर आती हैं, तो बिल्कुल आपकी परेशानी भी आपका हल साथ लेकर आई होगी. तो बिल्कुल चल रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी जो भी परेशानी है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी. ठीक है,
2: इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया.
0: ओके, टंग ट्विस्टर बोलना है?
2: नहीं.
0: ओके, बहुत सारा ख्याल रखो रुखसार. एक रुखसार ने आज दूसरी रुखसार से बात की है. अच्छा, वैसे मेरे नाम के जो लोग हैं ना वो बहुत कम होते हैं और बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम जो है ना रुखसार नाम की लड़कियां होती हैं, मतलब ये नाम बहुत रेयर है. तो इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब भी. तो कमर्शियल ब्रेक हम प्ले करेंगे और उसी के साथ हम वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

बहुत सारे मैसेजेस की तरफ आते हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के. सफदर बलोच ने हमें बहुत सारे मैसेज कर दिए. मिठरी रुखसार, आप कैसी हो? इंशाल्लाह आप ठीक होंगे. जी मैं इंशाल्लाह ठीक हूँ. और कहते हैं कि मेरा एक अर्ज है कि आपसे मुझे तुम अपनी आवाज में आगे मिसिंग पार्ट है. और इसके अलावा जी मिठरी रुखसार सफदर बलोच हमारे साथ वंस अगेन मौजूद है. अच्छा, और इसके अलावा सफदर बलोच वंस अगेन आहिस्ता आहिस्ता आगे मिसिंग पार्ट और आपका सारे के सारे मतलब सारे के सारे शेर. मेरे ख्याल से ये वाला मिसिंग पार्ट नहीं है. कहते हैं कि गिरी शबनम बंद मोती कोई जालिम आके तोड़ गया, उस बेवफा से क्या मिलना जो अपना बना के छोड़ गया. अरे वाह क्या बात है.

अच्छा कमेंट रीड कर रहे थे गुलाम मोहम्मद मरी बलोच, हमें सुन रहे हैं रुखसार, शो जबरदस्त है, आपकी आवाज भी बहुत जबरदस्त है, थैंक यू सो मच. अच्छा ये रुखसार मरी है, रुखसार मरी मीरपुर खास से, थैंक यू रुखसार. रेहान खान, रेहाना खान, सॉरी रेहान, रेहाना को मैंने रेहान बना दिया. अच्छा रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं जी, थैंक यू. और मेरे ख्याल से मैं एक और गाना प्ले कर देती हूँ, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. और एक अच्छा सा गाना मैं सोच रही हूँ कि आज जाए मेरे सामने और मैं उसको प्ले कर दूँ. सो एक अच्छा सा गाना हम लगाते हैं जल्दी से और वो सुनते सुनते हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब भी. तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: पहुंची रुकसर, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और लास्ट लिंक में वापस आ चुके हैं जी। और मैं कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी लास्ट लकी कॉलर भी ले लूं। तो हम लास्ट लकी कॉलर लेंगे 03000113488 के ऊपर। लास्ट लकी कॉलर, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मोहम्मद इस्माइल है, पुलशहर का।
0: मोहम्मद इस्माइल कैसे हैं? ठीक है,
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी यहाँ सुनाओ।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मुझे बताइए प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कौन सा है
1: आपका? रोज प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: कौन सा?
1: मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: कैसी हैं बाजी, ठीक ठाक?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लास्ट लकी कॉलर हैं आप, मुझे बताइए आज की अच्छी बात।
1: आज की अच्छी बात ये है कि किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए।
0: वेरी नाइस। और कुछ कहना है?
1: जी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ।
0: सुना दे।
1: मैं सुनाना ये चाहता हूँ, अजीब कमाल करती हैं आपकी यादें, अजीब कमाल करती हैं आपकी यादें, सोचूं तो बिखर जाऊं, ना सोचूं तो किधर जाऊं।
0: अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। और कुछ कहना है?
1: बस और सबको मैं यही कहूंगा कि खुश रहें और खुश रहना सीखें, दूसरों को भी खुश रहने दें।
0: ओके, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज। और ये था लास्ट एंड लकी कॉलर। और इसके अलावा जी प्रोग्राम का टाइम भी

हम लेंगे आपसे इजाजत. और आज का जो सेगमेंट रहा है बोलो तो मानो, जिसमें आज के विनर्स हैं जी, या विनर्स क्या मतलब एक ही विनर है और वो है द वन एंड ओनली हमेशा की तरह सरदर्द. सरदर्द ने आज भी बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला. फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचार होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजी. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह.

सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सुप्रीम कोर्ट हुकुम ॾेई ॾिनो त पीटीआई बानी खे ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कयो वञे। अस्पताल ॿाहिरां अमन अमान जी सूरतहाल ख़राब न थियणु घुर्जे। अदालत हुकुम ॾिनो त अस्पताल इंतिज़ामिया मेडिकल बोर्ड जोड़े। बोर्ड में पीटीआई बानी जी भेण उज़मा ख़ान ऐं ज़ाती डॉक्टर बि शामिल।

ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कार्रवाइयों नव दहशतगर्द मार वाया। सिक्योरिटी जरिये मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस ज्यारत हरनाई ए सोराब में गुझी इतलाते ज्यारत हरनाई विच में जाबलू सिलसिले में गुझी इतलाते ऑपरेशन किया वो जै दौरान अठ दहशतगर्द मार वाया। सोराब के इलाके हाजिका में भी एक दहशतगर्द जहनम भेड़ो मार वेल दहशतगर्दन वटा वही मकदार में हथियार हथ किया वाया।

पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय गृह वज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परॾेही खाते जे तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ़ अंदरूनी सियासी मक़सदु हासिल करण लाइ प्रोपोगेंडा आहे।

एकवीह हंधनि ते छह हज़ार हिकु सौ पंजाह खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दाड़ियुनि सां वेख। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी क़ौमी सलामती, दहशतगर्दी, इतलाती जंग ऐं सोशल मीडिया जे चैलेंजेस ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं शागिर्दनि जे सवालनि जा दलीलनि सां जवाब ॾिना। ISPR ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय दस्तावेज़ी फिल्म खे हक़ीक़तनि जे उबतड़ करार ॾेई छॾियो। ISPR पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त मोरकाए हक़ खे हिकु साल गुज़रण बावजूद भारत हक़ीक़त खे मुंहुं ॾियण खां इनकारी आहे। ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ीक़तनि जे उबतड़ ड्रामाई ऐं प्रोपोगेंडा ते ॿधल आहे। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबति तारीख़ खे बिगाड़े पेश करे रहियो आहे। बेलगाम वाके जा जवाबदार 28 जुलाई ते मारिजी विया त भारत 7 मई ते कंहिंखे सज़ा ॾिनी। फिल्मी अंदाज़ में पेश कयल इहा समूरी दास्तान कूड़ ते ॿधल आहे। भारत मोरकाए हक़ में नाकामी खे तस्लीम करण बदिरां तारीख़ खे पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ पेश करण जी कोशिश कई। मोरकाए हक़ दौरान पाक फ़ौज भारतीय जारियत खे नाकाम बणाईंदे 8 भारतीय जहाज किराया ऐं ऑपरेशन बनियान अल मसूस दौरान 28 भारतीय फ़ौजी तस्मीनात खे कामयाबीअ सां निशानो बणाए तबाह कयो।

0: quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
1: CNN.
0: Fake news. You're fake news. You're loud. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead.
2: Mr. President, is there enough?
3: तू गोर करण वारी कूड़ी रिपोर्टर आहीं, कूड़ियूं खबरूं ॾींदी आहीं। अमेरिकी सदर औरत साफ़ीअ ते डमिरजी पियो व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान CNN जे रिपोर्टर अमेरिकी सदर खां सवाल कयो त सदर ट्रंप खेसि बेअदब चई नज़रअंदाज़ कयो। औरत साफ़ी ॾखण कोरिया बाबति सवाल कंदी रही, पर ट्रंप खेसि चुप करण जो चयो। तूं अजायो गोर कंदी आहीं, तूं कूड़ी रिपोर्टर आहीं ऐं कूड़ियूं खबरूं ॾींदी आहीं। USS लिंकन ते खाधे जी घटाई वारी CNN जी ख़बर कूड़ी हुई। आबना हर्मज पार करे निकरंदड़ जहाज ते हमले जे इतला हमले जो हिकु ॼणो मारिजी वियो। बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन चयो इतला मिलियो आहे त जहाज खे हिकु अणॼातल नोत जे प्रोजेक्टाइल सां निशानो बणायो आहे। हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो ऐं जहाज जे इंजन रूम खे नुक़सान पहुतो।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद।

0: आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: माशाल्लाह फौजी पाइप फैक्ट्री नस्त गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014514656 तौकीर अहमद 03616237।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03005569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

कुल दो के समान दे चाहतों की बारिश उलास वल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस दर्द कम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साय में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन। आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मांथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जल्दी का नमस्ते। बिल्कुल जी प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होगी, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होगी और इसके अलावा आप लोगों को सुनाए जाएंगे जी बहुत अच्छे अच्छे वाले म्यूजिक कलेक्शन के साथ साथ आप लोगों के साथ होंगी जी इतनी सारी बातें। तो इतनी सारी बातें करने के लिए आप हमारे साथ जरा रेडी शेडी हो जाइए क्योंकि प्रोग्राम में आप लोगों का साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो हमारे प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाइए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और कैसे आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, क्या ये सारा प्रोसेस होने वाला है वो बिल्कुल समझाएंगे। ओके जी इसी के साथ साथ वाकई आप लोग कितना जान चुके हैं मुझे। अरे इस बात को लेकर मैं कभी कभार ये सोचने लग जाती हूँ कि इतना तो मैं शायद खुद को नहीं जानती जितना आप लोग मुझे जानते हैं। अच्छी बात है वैसे ये। अगर ऐसा होता ना, अगर हम डेली बेसिस के ऊपर किसी से मिलते हैं, किसी से मुलाकातें होती हैं हमारी, तो हम ये जरूर समझ जाते कि अगला जो इंसान है वो कैसा है। क्योंकि कहते हैं ना मिलने से चीजें और बातें जो ना वो जरा खुलकर सामने आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही सीन है। अगर आप रोज किसी से मिलेंगे, रोज किसी से बातें करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान के बारे में तमाम चीजें तमाम बातें मालूम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों का हमारा बॉन्ड भी हो चुका है जी इस प्यारे प्रोग्राम में। तो आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम इन खुशामदीद, साथ ही साथ आपकी मोहब्बत और समाद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आप सर आपने हाल चाल बताइए। सो डियर लिसनर्स अंत के हालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मोड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। और जनाब फाइनली हमने यहाँ पर एंट्रियां मार ही ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं। तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक। यानी कि पूरी 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहूंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो चलिए जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहिए। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करेगी भाईजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं हम आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी हम एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा हमारी लिस्ट में जरा मौजूद है तो हम ये प्यारा सा कसीदा आप लोगों के साथ सुन लेते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वापस मुखातिब आप लोगों के पास होंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क प्रोग्राम जल्दी का नाम वर्ष दिए।

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा कसीदा यहाँ पर आपने हमारे के साथ सुना, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नामस्ती, आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, और जरा आपने होने का एहसास दिलाएंगे और किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो बताएंगे, लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है उसकी जानिब भी जरा आ जाते हैं। तो बिल्कुल जी, आज का जो सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सब लोगों ने मुझे ये बताना है कि वैसे वो तो पहले के दौर में होता था, जब घर में मेहमान आते थे तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे और घर में मतलब एक खुशी वाला माहौल होता था, लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो अगर मेहमान घर में आ जाते हैं तो सबसे पहले तो लोगों का मुंह बन जाता है। तो मेरा सवाल आप लोगों से कुछ इस तरह होने वाला है कि आपने मुझे ये बताना है कि जब आप घर जाते हैं या फिर आपको घर में बताया जाता है कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, ये आज आप मुझे जरा बताएंगे। मैं जरा आज ये जानना चाहूंगी कि कहां कहां पर किन किन के घरों में अभी तक मेहमान नवाजी बाकी है ज्यादातर देखा जाए तो भाई ये जो सिस्टम है ना, तो ये थोड़ा सा आउट होता जा रहा है। और उसके अलावा चलें जी, आज हम जरा इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और आपको बताया जाता है कि भाईजान आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर मेहमान आ चुके हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, आपका क्या रद्दअमल होता है। और अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर से, यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमारा शो सुनते हैं, तो जनाब शामली प्रोग्राम भी हो जाया करें। और क्या करना पड़ेगा आपको, आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जिए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है, और पेज के ऊपर आप जैसे ही आते हैं तो वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ये तीनों काम आप लोगों ने करने होते हैं, तो लाजमी कीजिए ये तीनों काम। और हाँ, पोस्ट को लाइक तो जरूरी किया करें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं सिर्फ कॉमेंट करते हैं, तो सिर्फ कॉमेंट करने वालों कंजूसों पोस्ट को लाइक और शेयर भी करना होता है। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और बताइए आप कहाँ कहाँ से मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, और इसी के अलावा टॉपिक को लाजमन आपने फॉलो करना है और मुझे बताएं अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और आपको बताया जाता है कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो मुझे बताएं आपका रद्दअमल क्या होता है, आपका रिएक्शन क्या होता है, आप क्या कहते हैं। और यहाँ पर टाइम जी हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं और उसके बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है प्रोग्राम में, तो एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। चलती गाना मस्ती आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक का।
1: It's 1:30 PM. This time.

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही رابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हले
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं कि आप बात है। और यहाँ पर हमारे साथ ही हमारी निदड़ी कहती हेलो स्वीटी वेलकम टू शो, सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वफा सूफी बलोच कहते उफ अरे आज ही आना था इन्होंने, अच्छा ये दोबारा से आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है। और उनके अलावा प्रेमचंद भाई हमारे साथ हैं, गोठ जान मोहम्मद जड़े जो प्रेम मिस्त्री साहिल बाजी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा। हिदायतुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, आज ये सॉन्ग चला दे। अच्छा सही आमा समझी हो। उनके अलावा निदड़ी कहती है टॉपिक मुझे तो जरा पसंद नहीं मेहमान, क्योंकि कोई भी आता है फिर मेरा सारा दिन बिजी जाता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है जब कोई घर आए तो देख ले भाई। तभी मेरा आज दिल किया कि मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ लूं, मैं जानना चाहूंगी कि मेरे जो लिसनर्स हैं भाई उनका क्या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो क्या बताते हैं कि अगर उनके घर मेहमान आ जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं या उनके दिल में क्या होता है। बाजार तो हमें जाना पड़ता है, मुस्कुराते हुए मेहमानों से मिलना पड़ता है, लेकिन दिल में क्या चल रहा होता है ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।

अच्छा साकिब अली पंवर हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं कैसी हैं? मैं मायरा हूँ। अच्छा मायरा हमारे साथ है, सलाम दीजिएगा अनमोल को। चलें अनमोल को आपका सलाम पहुँच गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं मायरा। और हैं जी हमारे साथ मायरा दोबारा, कहते हैं सिद्रा यार आप मुझे सॉन्ग तो सुनाए ना प्लीज, अगर नहीं सुनाएंगी तो फिर भी ठीक है, वैसे भी मैं तो आपको सुनने आती हूँ सॉन्ग नहीं। चले मैं आपकी पसंद का गाना लगाऊंगी, कौन सा गाना सुनना चाहती है? और कहती है एक बात तो बताओ, आपकी आवाज बहुत प्यारी है ये सच्ची? नहीं यहाँ पर कुछ वॉइस चेंजर लगा कर बोलती हूँ। ये कैसा सवाल है?

बात है। सनाला फुलपोट्रो हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ कहते सिद्रा मुस्कान, मीठी आवाज की मालिका सिस्टर सिद्रा, मैं खैरपुर से हूँ। खजूर खाओ भेजू, नहीं नहीं भेजी वाला सिस्टम नहीं है इधर, बाकी आप खाइए मुंह आसाने करे खाए जैसे ही। और रशीद कौसु भाई भी सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, क्या हाल है अदी, शाह बुखारी दरगाह से हैदराबाद से आपका शो सुन रहे हैं, क्या बात है जी, आपको वेलकम कहा जाता है थैंक यू के साथ साथ। और उनके अलावा नदली कहती है कि लड़कों के लिए अच्छी बात होगी। नहीं मुझे ये लगता है कि लड़कों के लिए ये होता है कि लड़कियां तो घर में बैठी होती हैं, मेहमानों से बस बातें करती हैं, लड़के बेचारे जाते हैं, गर्मियां हो सर्दियां हो बाहर से जाकर चीजें लेकर आते हैं जो मेहमान खाते हैं, तो लड़कों के लिए भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। वो भी अच्छे हैं, उनका भी बराबर का काम होता है। और कहती है ऐसा बोलो ना ये आरजनी AI, हाँ बाबा मैं AI हूँ।

0: अभी क्या बात है, बिल्कुल जी आप लोगों के साथ है, चिट चैट चल रही है हमारी।
1: मुझे कहते हैं बिल्ली, मुझे कहते हैं।
0: अच्छा, ये हमारे साथ है स्टेशन अब्दुल्लाबाद खां मारूफ हुसैन शेर। प्रोग्राम सुठो हले पयो, प्लीज प्लीज सरमन सिंधी सलाम टू ऑल संगत। ओके ओके भाजी, फरमाइश सलाम जी कोशिश कयूं था। थैंक यू तुम्हारे सगर मौजूद है।
1: मुझे कहते
0: अच्छा हिदायतुल्लाह कहते मेहमान भले आए मगर बस आपके शो के दौरान ना आए, डिस्टर्ब हो जाता है। अले अले। और चाचा खालिद कहते हम घर आए आपके पास तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? भाई मैं मेहमानों को अटेंड ही नहीं करती, ये अम्मी के काम होते हैं। मैं जैसे इधर हूँ ना बिल्कुल उलट हूँ, उलट मतलब अपनी रियल लाइफ में मैं किसी से बात ही नहीं करती। तो मेहमान आ भी जाते हैं, थोड़ा दुआ सलाम करके फिर अपने काम से लग जाते हैं।

अरे भाई, बिल्ली से याद आया, हमारे घर में चार बिल्ली है। एक बड़ी बिल्ली, उसने तीन बच्चे दिए हैं। हाय, इतना ना कोई बेजार कर देते हैं बिल्ली के बच्चे। घर में अगर कोई एक इंसान ऐसा होता ना, जो भाई एनिमल लवर होता है, जिसको सारी चीजें पालनी होती है, बिल्लियां भी पालनी है, कुत्ते भी पालने हैं, तोते भी पालने हैं, कबूतर भी पालने हैं, तो ऐसा इंसान मैं चाहती हूँ घर में नहीं होना चाहिए। उसको अलग से कहीं बिठा दो या उसको जू में छोड़ कर आ जाओ, वरना फिर वो इंसान आपके घर को जू बना देता है। या इसी हमारे घर में भी

सुइया कहीं ना गलत गा रहे कुछ। गाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, गाना सुनेंगे। इसी के साथ साथ आप क्या कह रहे हैं जी, आपके मैसेजेस के जाने भी आते हैं।

अच्छा वासु भाई के दी अदी सिडो जवाब मेहमान भली अचन पड़ हिगड़ी रात रहन अदी पर हाँ या भी गाल है, या भी गाल है। अच्छा मायरा कहती माशाल्लाह सिद्रा मेरे हस्बैंड मुझसे जब लड़ाई करते हैं तो मैं आपका शो सुने आ जाती हूँ, कसम से सारा दुख भूल जाती हूँ और डांस करना शुरू हो जाती हूँ। बस ॾिसो ॾिसो असां दुख वारे माण्हुनि खे बि खिलाए छॾींदा आहियूं। वैसे यार सुठी ॻाल्हि आहे, बस ॾुख न कंदा कयो हस्बैंड वीचारे जो। ऐं उन खां अलावा नदड़ी कहती है उनको ना मेहमानों के साथ बिठाया ही नहीं करे, सही है। अच्छा मोहम्मद राशिद अमान की थी सिस्टर सिद्रा, रेगुलर की तरह आपके प्रोग्राम को खूब एंजॉय कर रहा हूँ, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं। अच्छा मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जेकब अबासी आपको भी वेलकम कहते हैं। राशिद अमान भाई कहते हैं राज रखे हुए हैं तेरे पास, तुझको रखा हुआ है राजों में। आए हाय ओ या गाल।

हाँ जी, पता नहीं कब मिल सो, बस न मिल सो तो भलो हुआ. ना ना ना मिल सो, ना मिल सो.

0: अरे भाई क्या बात है। मायरा कहती हमारे घर में भी एक बिल्ली है पर उसने 5 बच्चे दिए हैं। हाय क्या बात है। अच्छा हमारे घर में सबको पसंद है बिल्लियाँ, बिल्ली के बच्चे, बस मुझे ही छोड़कर। फिर मेरी बात जो है ना कोई मानता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि भाई घर जो हो ना वो घर होना चाहिए। उसने क्या ये बिल्लियाँ सारी चीजें पाली हुई होती है, तो मुझे पता नहीं क्यों ये चीजें अजीब सी लगती हैं घर के अंदर। तो मेरी एक की बात कोई नहीं मानता, इसलिए सबने पाली हुई है, सबने रखी हुई है, तो बस हम बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं थोड़ा सा।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सुप्रीम कोर्ट थानी पीटीआई के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुकुम दे छे। मेडिकल रिपोर्ट मौजूद पीटीआई भानी जी ने नब्ज नॉर्मल आहे, नई दिल वाइटल ऑर्गेनाइज बे मुतासिर थियण शुरू थी विया है। ए जे इस्लामाबाद पीटीआई बानी सां संदसि भेणनि जी मुलाक़ात बाबति अदालत खे आगाही ॾिनी त जेको कानून जी भञकड़ी कंदो त मुलाक़ात न थींदी। अदालत चयो हो त कानून जी भञकड़ी कनि त तव्हां बि कंदो, रियासत जो कमु कानून जी भञकड़ी करण न आहे। भेणनि सां मुलाक़ात उन्हनि ते थोरा न आहिनि पर इहो संदनि बुनियादी हक़ आहे। अदालत मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ज़िमेवारी घुरी। सलमान अकरम राजा मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ख़ातिरी कराई। ॿुधणी 16 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत में नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीअ ते अमल दरामद बाबति इजलास। वज़ीर आज़म पारां नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण लाइ मरतूब ऐं सराहता क़दम यकीनी बणाइण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त हुनरमंद ऐं बासलाहित नौजवाननि खे बाइज़त रोज़गार फराहम करण हुकूमत जी पहिरीं तरजीहन में शामिल आहे। मुल्क जे समूरनि इलाइक़नि ख़ासतौर ते बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण ते ख़ासि ध्यान ॾियण जी ज़रूरत आहे। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय घरू वज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परडे॒ही खाते जे तर्जुमान जो चवण आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ़ अंदरूनी सियासी मक़सद हासिल करण लाइ फुफो गेंडा आहिनि। पाकिस्तान दहशतगर्दनि खे मालिकी सहकार फराहम करण समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी कराए रहियो आहे। कुलभूषण यादव केस वाज़े सबूत आहे। बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय तकरीबकारी तां आलमी ध्यान न हटाए सघनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मिरापुर FM 94, नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मिरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300338569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मठियारी सखरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। जल्दी का नाम

बिल्कुल जी, तो आप तमाम सुनने वाले समाधान को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप लोगों की मोहब्बतों और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो ऐसा किया करें, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है जी। तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं।

आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं कि आज के टाइम में अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं और आपको बताया जाता है कि भाई मेहमान आ चुके हैं घर में या मेहमान आ रहे हैं आज हमारे घर, तो आपका क्या रिएक्शन होता है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं या फिर आप क्या करते हैं? क्योंकि आजकल के दौर में मैंने ये चीज बड़ी नोटिस करी है कि मेहमानों का आना या फिर किसी के घर जाना, ये चीज थोड़ी सी आजकल के टाइम में मुश्किल हो चुकी है। वो वाला सीन हो चुका है कि लोग इसलिए शायद किसी के घर नहीं जा रहे कि क्या पता वो हमारे घर ना आ जाए। तो ये ऐसा होता है बिल्कुल, अगर हम उनके घर जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो भी हमारे घर आएंगे। तो ये चल रहा है आजकल, चीजें जो है वह बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। रिश्तेदारियों को देख लें, अब पता नहीं ये क्या रीजन है भाई, क्यों ऐसा सिचुएशन सारी हर तरह बन चुका है कि भाई हम खुद ही सोचते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। पहले तो ऐसा नहीं होता था, कुछ सालों में ऐसा क्या हो चुका कि भाई ये चीजें इधर की उधर ही हो चुकी हैं। चलें आप जरा इसके ऊपर मुझे बताएंगे कि आपका क्या कहना होगा, और उसके अलावा जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सके और वो भी बता सके कि वो भी हमारे साथ मौजूद है। ऐसे के साथ साथ टॉपिक को फॉलो कीजिए और यहाँ पर आप हमारे साथ हैं तो बिल्कुल आपको शामिल प्रोग्राम रखा जाएगा, आपके मैसेजेस हैं, लेकिन मेरे पास जो आपको सुनाने के लिए गाने मौजूद है तो हम जरा ऐसा करते हैं कि एक अदद गाना आप लोगों को सुना देते हैं। तो हमारी लिस्ट में बहुत ही प्यारा सा एक गाना मौजूद है जिसकी हमें फरमाइश सादिया ने कर दी थी। दो तीन दिनों से बेचारी गाने की फरमाइश करती आ रही थी, तो ये गाना हम सादिया को डेडिकेट कर देते हैं और गाना एंजॉय करेंगे। गाने के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे जी, आपके मैसेजेस कमेंट्स की जाने बातें हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क, इनकी आवाज़।

वाह साईं वाह, ॾाढो भलो गानो. हुन खां अलावा असां सां गॾु पैनल ते कुझु तव्हांजो मैसेजेस आहिनि. ॻोठ नबीदाद बंबरो नारो खां इमाम ॾिनो बंबरो भाउ असां सां गॾु आहे. मिठड़ी अदड़ी ख़ुशि आहीं. चओ था प्यारी भेण, अॼु असां वटि सखर जा महिमान आयल आहिनि. तव्हांजी ज़बान सची ऐं मिठी आहे. लॻे थो अॼु जेको बि ॻाल्हाईंदसि उहो सच थी वेंदो. पोइ इलाही इलाही पंहिंजे लाइ दुआऊं घुरी वेठो. तव्हांजे लाइ बि चाचा खालिद कहते हैं, बेटा सुनो, हमारे पास मेहमान बहुत कम आते हैं, बट जब कोशिश की. अच्छा चाचा, ये तो आपने एक पता नहीं इमेजिनरी बना ली एक चीज, तो मैं पता नहीं भाई, मैं कुछ कह नहीं सकती इसके ऊपर. क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी चलती ही नहीं है. तो बस मैं कैसे आपको हाँ या ना बोल दूँ. अच्छा, आसिम इन हदीसा हमारे साथ मौजूद हैं और आपको वेलकम कहते हैं. दोनों हमारे साथ साथ मकसूद मलाह कहते हैं, सिद्रा मुस्कान मास्टर मंजूर जो गानो बुधराए जा. अच्छा, जेको तव्हां लिखियो आहे इहो मिलियो त हलाईंदा, न त कोई ॿियो मास्टर मंसूर जो गानो तव्हांखे ॿुधाए वठंदासीं. मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर खे थी अस्सलाम अलैकुम, यो ज़बरदस्त है बाजी. थैंक यू वेरी मच प्यारे अब्दुल्ला महर भाईजान. और कहते हैं बाजी सॉन्ग सुनाए मंजूर सखीराणी का. थैंक यू. ओके जी, मंजूर सखीराणी आपके लिए लगा देंगे.

अलाए जी छा था छो गाल तो समझ में अचे कोन जी अरे कहना क्या चाहते हो अच्छा इरम कहती है आप ही मैं भी आपकी तरह उल्टी हूँ मेहमानों को बस दुआ सलाम करके मैं अपने रूम में छुप जाती हूँ या कोई काम करती हूँ कुछ लोगों की ऐसी नेचर होती है अब नेचर के ऊपर तो इंसान जो है ना नेचर के अगेंस्ट तो कुछ कर ही नहीं सकता ना जेडी इंसान की तबियत होंगी तो उन्हें हिसाब से पानी जिंदगी गुजारी दो नहीं गाल के समझना करो उनका अलावा तुम पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो ओके जी सो ही ढो भलो गानो जो शायद बबर की आवाज में लिस्ट में लगाया है इन ही फरमाइश असा कई बुधाया कई

0: नफरत थी।
1: ओके जी, जी खास के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अकबर खास के लिए। हिन गाने जी तमाम फरमाइश कई आसो ये गानों बिल्कुल एंजॉय करना सी गजी आई तो था तो सा मिलन जो हसरतों अन्या भी अधूरियों आ है। ओ फलाणी उम्मीद आ है जिंदगी जे के मोड़ ते मिलंदा सी। वाह साईं वाह। अच्छा मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं कि मेहमानों के लिए 24 घंटे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं, बेशक रोजाना आए लेकिन
0: ओ दिल नफरत सा भरल थई त मिलण छो थो अची भली बर।
1: ओके कहते हैं जितना जल्दी आए उतना जल्दी वापस चले जाए, ना वो बोल रहे हैं ना हम ऐसे एंजॉयमेंट करेंगे, खाने पीने की तो पास से भी ना गुजरे वरना मेहमानों से अल्लाह तो वाकड़ा बनू आयो अल्लाह ता हकीकत बुधाए मां भी चवंदी आहियां बस कारे घुमण वञे मां पाण ई आहियां कारे घुमण वञो त बस अधु कलाक वञो कलाक वञो ज्यादा टाइम न वञो अगरि कोई अचे त उहो बि ईअं ई अचे हाणे सॼी दुनिया सां हिसाब सां त कोन हलंदी न सो बिल्कुलु थोरो बर्दाश्त करणो पवंदो आहे।

जी बरियाम अली जतोई हमारे साथ ये थे सिद्रा, हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो एंड सलाम हो दिल से आपको एंड बेस्ट म्यूजिक ऑल एंड लवली, थैंक यू वेरी मच।

0: This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम. रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम.

88.9 FM.

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर केल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 03003592120।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो, डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

ओके क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हो और इसी के साथ साथ वापस आ चुके हैं आप लोगों के पास और प्रोग्राम सुन रहे हैं जल्दी का नाम वसी। बिल्कुल जी, आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है यहाँ पर, जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है प्रोग्राम की लास्ट लिंक में।

देखिए सेहरा है ना, बलोची में सेहरा है, घोट का जिक्र आ रहा है और सेहरे का जिक्र आ रहा है, मोर का जिक्र आ रहा है, तो समझ आ रही है बात के मतलब क्या है नगतनाज का। टेंशन ना ले।

बिल्कुल जी, आप हमारे साथ मौजूद है फेसबुक वाली समाते जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करके बताइए अभी हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ साथ जरा टॉपिक को फॉलो करते रहिएगा। उनका अलावा पैनल ते तमाजा खोल मैसेजेस जमा थी वया पैनल की तरफ भी अचूं था पर मुखे लगे तो पेना कुछ तमाजा कमेंट्स पढ़ी वठा। हां ये सही रहेगा। अच्छा अनवर भा से गड मौजूद है। अनवर भा तां जो मोहब्बत वन बाबा प्रोग्राम बुधो पे आई। अनवर भा जको वो असन डाडो भलो भा है। अला केड़ी गाल याद अच्छी हुई। और जी सादिया कहती आपे ये पोएट्री छोड़ दिया है तेरे इंतजार करना मेरी जान जब रात गुजर सकती है तो जिंदगी भी गुजर जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही था जो। और फहाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। फहाद अली भाईजान क्या कहते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदी, क्या हाल है आपके। मुझे लेट हो गई बाजी, नींद आ गई थी पता ही नहीं चला, अब आंख खुली तो जल्दी फोन उठाकर मैसेज भेज दिया आपको। बहुत शुक्रिया भाईजान, ये आपकी मोहब्बतें होती हैं कसम। और कहते हैं कि शो नाइस बाजी, आपका प्रोग्राम बहुत दिल से सुनते हैं। रिदा को भी आपका शो पसंद आ गया है, आज भी रिदा प्रोग्राम सुन रही है। हेलो रिदा, कैसी हो

सफा डाडोवा। ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्या हाल है आप? ठीक है आप? मैं सुरैया फ्रॉम पनो आकिल से, आपका शो नाइस है। फर्स्ट टाइम आपका शो, अच्छा फर्स्ट टाइम आपके शो में शामिल हुई हूँ। प्लीज मुझे आज लाजमी मुनव्वर मोलाई का सॉन्ग सुनाना, हथम हथे क्या सी डाढो आही गानो सोनी जी नाले। सुरैया तवा के जोंदा भली करी आया तवा सने प्रोग्राम में, थैंक यू। मां छा चवण वारी अस, एक तुझे लाए पांजा भी छड़िया, धारिया भी छड़िया, कुछ भी न बचो बाबा।

बिल्कुल पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए. वैसे वो वाली बात हो गई ना कि मुझे तो लीव मी अलोन कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग वैसे ही छोड़ जाते. हाँ ला सही गाल तो है. सनाला फिलोपोटो कहते हैं, इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो है जो तुझे किसी और का ना होने दे. हाँ ओ या भली गाल कही तई, सफा भली गाल कही तई.

अच्छा फहद भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। बहुत सारे आपने कमेंट कर दिए हैं और प्यारी रिदा को भी वेलकम करते हैं। अखलाक भाई कहते हैं कि अजकल जा मानू मेहमान लाए हा ता सही था जो ता जड़ो कोई भी ना बाबा बकेलो ता मटन खारायो था मेहमान के सही गाला। अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम से उस्ताद बुखारी जी शायरी हाजिर आहे उन खां पो दिसूं त केड़ो गानो ता हलायो गानो ता सेट आ पाणे हली वेंदो बाकी उस्ताद बुखारी छा तो फरमाए यो दिसी था वठो। अच्छा लिखो था कासिद वनी यार रखे चो का नाजुक घड़ी बीमारी जिया जेड़ो हाल दिसी तेड़ो पेश कजा तोखे कसम तुझे परवरदिगार जो आ हीला करे हकीम थकिया सदा आजार जिया केड़ो इलाज उस्ताद करे जेंके तलब सोने जे दीदार जिया वाह वाह वाह वाह मोहम्मद जमान भाई कहते हैं पैसे वालों पर यकीन करें बस गाल में दम आवे से असा पान पैसा कमाए यो भी सही है। ओके जी ॾाढो भलो गानो ॿुधो सी ॾाढो भलो ॿियो गानो आहे जेको असां ॿुधंदासीं मां भला किना गाना हलाईंदी आहियां न नी ॾिसो हिन लाइ भला भला गाना ॿुधंदासीं। अच्छा मायरा कहती है सिद्रा टॉपिक में तो बहुत खुश होती हूँ जब हमारे घर मेहमान आते हैं क्या बात है क्या बात है। दर्दे दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम चंदा जानी कैसी हैं वेलकम टू शो अमेजिंग वॉइस माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच थैंक यू स्वीटी। प्रेमचंद भाई हमारे साथ हैं प्रेमचंद भाई तमाम जो मोहब्बतू आहिनि प्रोग्राम तमाम बुधो पिया।

0: अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। सनाला फुलपोटो भाई तव्हां शमन जी गाने जी फरमाइश कई आहे, मां कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंदि जो गानो हली वियो त हलायूं था न त पंजे बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधी वठंदासीं। ठीकु आहे अनवर भाई, हिते टॉपिक दी आप जैसा कोई महिमान आ जाए तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बहरहाल अच्छे महिमान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जो भी हाल हो उनकी खातिर तवाजन करनी चाहिए क्योंकि वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ अनमोल तोहफा होते हैं। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। वासु भाई कहते अदी से डो तमा बुधायो मां बुधाय छडियो बुधाय छडियो तमा न बुधो छा पेला
1: मसे मसे मशहूर तुस लिखी लिखी जो लोग
0: खा। दादूला कहते हैं सिद्रा जो थोड़े बहुत सलाम दुआ है रिश्तेदारों से वो जाएगी। टॉपिक आजकल ऐसे रख दियो भाई, असा उथंदा वेंदा ना रिश्तेदार सा, असा उथण वेणी आ, हु वेना त असा उथी वेंदा आयो, हू उथंदा आहिनि त असां वेही रहंदा आहियूं। ईअं उथण वेहण हले थो अॼुकल्ह रिश्तेदारनि सां। अच्छा जंहिंजा गाना रहिजी वञनि था तव्हां पंज बजे वारे प्रोग्राम में अचिजो, तव्हांजो फरमाइशूं हलाईंदासीं। ठीकु आहे, ॾिसो मां केॾी भली आहियां।

अच्छा, दर्द दिल के नहीं टॉपिक चंदा जाने, मैं तो खुश होती हूँ। वैसे चंदा, तुम कैसे जान लेती हूँ, आज मेहमान आए हैं, प्यारी पुप्पो आई है। वाह साई वाह, पुप्पो बड़ी प्यारी। खोड़ो ही न थो लगे तो मत आता जो लगन दो जे भली गाला जी। खास के लिए थैंक यू, थैंक यू। बक्तली सियाल भाई वेलकम हो गया आपका भी। रमजान अली भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम असलम।

अख्तियार अली सिंधी भाई, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू. रमजान अली भाई, थैंक यू. आपके मैसेजेस कुछ रेज आएंगे तो जल्दी से पढ़ लेते हैं. एस एन अली अरबानी में ज्वाइन कर चुके हैं. हेलो मैडम मुस्कान, में भी साथ साथ हूँ, आपको वेलकम कहते हैं. एस एन अली अरबानी और हैं जी निदड़ी. हाँ बोलो. अच्छा मायरा कहती है मुझो गानो तांजो गानो पंजी बजे वाले प्रोग्राम में बुद्धि उठना सी. ठीक है, साइकिल वाला गाना भी पंजी बजे वाले प्रोग्राम में बुद्धि उठना सी. हजार खंज तो ही भाई हमारे साथ है. हजार बात तांजो मोहब्बत वान डीपी मटाया है खैर ताए. हाँ हाँ ऐसा समझो, इतरो तो समझो मैं अच्छे पर. बाबा कल हलो हुयो पंज बजे वारो प्रोग्राम.

टाइम एतिरो जल्दी छो थो गुज़रे, बियो बियो ही वारो गानो बि असांखे ॿुधणो आहे। ही हलाईंदासीं बाबा मक़सूद मला जी फरमाइश ते गानो। और ये मौजूद वालेकुम अस्सलाम अलैहि सलाम मदद फुलजी स्टेशन खां फौजी पठान खान खोसो। छोकिरी सिदरा मुस्कान तव्हांजो आवाज़ भलो आहे, हाणे सिंधी ॻाल्हाईंदा कयो। मां कोशिशि कंदी आहियां भाउ, मां प्रोग्राम में इलाही सिंधी ॻाल्हायां, ओहिड़ी एॾी सिंधी ॻाल्हायां, पर थोरो थी वेंदो आहे, सिंधी मुंहिंजी तिरकी पवंदी आहे। और साइमा मीर कहे थी, वाह सिदरा वाह, जियो अपनी दुनिया में मस्त, हम अलग दुनिया है वाले हैं, जिन्हें आज तक कोई समझ ना सका, क्या पता आगे कोई समझ भी ले। मुख्य तो ना लगे दो, पर हाँ चलो अल्लाह में उम्मीद रखें। और कहती सलाम अम्मी जान मरियाम भाई और भाभी को, टॉपिक ईद का समा होता है जैसे उस दिन हो, सब खुश और मस्ती मजाक होता है जिस दिन मेहमान आते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कहती है साइमा मीर, ओ देखो प्यारी मेरा गाना कितने रह गया, भूल गई ना कौन सा, तुम तो आई अभी हो भाई, लास्ट लिंक में पहुंची आ साहिबा। वरी चए थी, ॾिसो मुंहिंजो गानो न हलायो, हाणे वठी कुटकी ॾियण जहिड़ी आहिनि। अच्छा ये मौजूद है सिदरा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, नालो लिखो मां पांजो डी शादी तकड़ हुई भला। हक मौजूद मौलाना इस्लाम अदत बदीन खान डॉक्टर हसीना साहिबा हमारे साथ है। सिदरा मुस्कान असा भी तमासा गड आयो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा।

0: सब समझाती ना अखलाक भाग कावड़ ना बस यो थोड़ो सुणे न सके हूँ मतलब डीपी खबर होंगी तो मू सुे वो जब नालो पढ़ो तो खबर पी अच्छा हजार भा सही
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
2: कानून की वनचड़ी कह तो मुलाकात न थी अदालत चो तो कानून की अदालत मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न करण की जिम्मेवारी हुई सलमान अकरम राजा रिपोर्ट पब्लिक न करण की खातिरी कराई बुधनी 16 सितंबर तीन मुल्तवी वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल यूथ इम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से अमल दरामद बाबत इजलास वजीर आजम पारा नौजवान के रोजगार जहां मौकिया फराम करण लाए मरतूब सरायता कदम यकीनी बनाने की हिदायत वजीर आजम शहबाज शरीफ चवा तो हुनरमंद बासलायत नौजवान के बाइज्जत रोजगार फराम करण हुकूमत की पेरी तर्जन में शामिल है मुल्क के समूरन इलाक खास तौर से बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान के रोजगार जहां मौकिया फराम करण से खास ध्यान देने की जरूरत है पाकिस्तान भारत में थींद गिरफ्तार के पाकिस्तान से जोड़ने जो इल्जाम रद्द कर छो भारतीय गरु वजीर जो दावा बेबुनियाद करार परदेही तर्जुमान जो चवण है तो भारतीय गिरफ्तार में पाकिस्तान के इल्जाम सिर्फ अंदरूनी सियासी मकसद हासिल करण लाइन भारत दहशतगर्दन के माली सहकार फराम करण समेत बेन मुल्क में दहशतगर्दी कराए रो है कुलभूषण यादव केस वाजे सबूत है तो बेबुनियाद इल्जाम भारतीय दहशतगर्दी तां आलमी ध्यान हटाए ना सकन ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कार्रवाई वधिक नव दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिए मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस ज्यारत तरनाई आई सोराब में गुझी इतला ऑपरेशन किया जैं दौरान नव दहशतगर्द मार्जी दहशतगर्दन वटा वही मकदार में हथियार के हथ किया गया DGISPR के समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधन के 6150 का शागिर्दन शागिर्दाणी से वेक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कौमी सलामती दहशतगर्दी सोशल मीडिया के चैलेंजेस से गालू कयू शागिर्दन के सवालन जा जवाब दिना

अब न हमज पार करे निकरंदड़ जहाज से हमलो हमले जो है जणो मारजी वयो। बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन चयो इतला मिलो आहे त जहाज के एक अणजातल नोइत जी प्रोजेक्ट कायल सा निशानो बणायो वयो आहे। हमले में एक जणो मारजी वयो। जहाज के इंजन रूम के नुकसान पहुंचो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: हर बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

डूंगर डुखो यन के दिलासा लेजन घणो कुछ जे तिन के जिना ता होता वन्यन तो की संदा तिन पहन पेर डुखो यन।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: प्रोग्राम जे मुआदे जी मसूदे जी मंजूरी ॾेई छॾी। पहिरें मरहले में खैरपुर जाम शुरू बदीन नौशरो फिरोज में 12-15 लख माण्हुनि खे पाणी ऐं सफ़ाई जूं सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। काबीना पफटेक हेडक्वार्टर्स ऐं जदीद डेटा सेंटर क़ाइमु करण जी पिणु मंज़ूरी ॾिनी, जिते आई हुब ऐं जदीद फील्ड कोऑर्डिनेटर नेशनल रूम्स क़ाइमु कया वेंदा। मनसूबे लाइ 44.29 करोड़ रुपियनि जी इज़ाफ़ी फंड्स जी मंज़ूरी ॾिनी वई। सीनियर सूबाई वज़ीरनि जा इनाम महिमान ब्रीफिंग ॾींदे चयो आहे त अटे जी फ्लोर मिल्स क़ीमत 112 रुपया फी किलो मुक़ररु कई आहे, जंहिं ते सख़्ती सां अमल करायो वेंदो। सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई खे शिफ़ा इंटरनेशनल इस्पताल मुंतकिल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। पीटीआई बानी जे इस्पताल मुंतकिली लाइ मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो बि हुकुम। इस्पताल ॿाहिरां अमन अमान जी सूरतयाल ख़राब न थियणु घुर्जे। जस्टिस शाहिद वईद चयो त मेडिकल रिपोर्ट मूजिबि पीटीआई बानी जे न नब्ज़ नॉर्मल आहे, न ही दिल वाइटल ऑर्गनाइज बि मुतासिर थियणु शुरू थी विया आहिनि। इस्लामाबाद पीटीआई बानी सां संदसि भेणनि जी मुलाक़ात बाबति अदालत खे आगाही ॾिनी त जेको कानून जी भञकड़ी कंदो त मुलाक़ात न थींदी। अदालत चयो त हू कानून जी भञकड़ी कनि, तव्हां बि कंदव। रियासत जो कमु कानून जी भञकड़ी करण न आहे। भेणनि सां मुलाक़ात उन्हनि ते थोरा न आहिनि, पर उहो संदन बुनियादी हक़ आहे। अदालत मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ज़िमेवारी घुरी। सलमान अकरम राजा रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ख़ातिरी कराए ॿुधड़ी 16 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी करे छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत में नेशनल यूथ इम्प्लॉयमेंट पॉलिसीअ ते अमल दरामद बाबति इजलास। वज़ीर आज़म पारां नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण लाइ मरतूब ऐं सराहता क़दम यकीनी बणाइण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त हुनरमंद ऐं बासलाहित नौजवाननि खे बाइज़त रोज़गार फराहम करणु हुकूमत जी पहिरीं तरजीहनि में शामिल आहे। मुल्क जे समूरनि इलाइक़नि ख़ासि तौर ते बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण ते ख़ासि ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय घरू वज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परॾे तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ़ अंदरूनी सियासी मक़सदु हासिल करण लाइ प्रोपेगेंडा आहे। भारत दहशतगर्दनि खे माली सहकार फराहम करण समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी कराए रहियो आहे। कुलभूषण यादव केस वाज़े सबूत आहे। बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय दहशतगर्दीअ तां आलमी ध्यानु हटाए नथा सघनि। ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवाइयूं, वधीक 9 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस ज़ियारत हरनाई ऐं सोराब में ॻुझी इतलाउ ऑपरेशन कयो, जंहिं दौरान 9 दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾी मक़दार में हथियार बि हथ कया विया। DGISPR जे समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधनि ते 6,150 खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि सां वेक। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी क़ौमी सलामती, दहशतगर्दी ऐं सोशल मीडिया जे चैलेंजिस ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं शागिर्दनि जे सवालनि जा जवाब ॾिना। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इना मेमण चयो आहे त आइन में नवां सूबा ठाहिण जो तरीक़ेकार मौजूदु आहे ऐं को बि शख़्स या इदारो आइनी तरीक़ेकार खां ॿाहिरि नथो वञी सघे। अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा ऐवान में वेठा आहिनि, कंहिंखे बि परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे। पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत जे मौक़िफ़ में का बि तब्दीली न ईंदी। काबीना इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शर्जील इना मेमण चयो त राणा सनाउला अॼु सुबुह चयो आहे त कंहिं बि काबीना इजलास में अहिड़ी ॻाल्हि न हुई। خالد مقبول صدیقی ऐं मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर ख़तम थी चुका आहिनि ऐं ॼाणे वाणे इश्तिहाल अंगेज़ ॻाल्हियूं पिया कनि। पीटीआई बानी जे सिहत लाइ दुआगू आहियां। बीमारीअ ते इंसानियत जो दामन न छॾणु घुरिजे। निकिरंदड़ जहाज़ ते हमिलो, अमले जो हिकु ॼणो मारिजी वियो। बरतानवी मेरी टाइम ऑपरेशन चयो इतलाउ मिलियो आहे त जहाज़ खे हिकु अणॼातल नोइत जे कुझु टिकायल सां निशानो बणायो वियो आहे। हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो ऐं जहाज़ जे इंजन रूम खे नुक़सानु पहुतो। ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्किया किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। तुर्किया जे सदर रजब तैयब उर्दगान ऐं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप विच में टेलीफोनिक राब्तो थियो। रजब तैयब उर्दगान चयो आहे त ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्किया किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। अवाम मथां बिजली किराइण जी तयारी। बिजली 2.5 रुपया फी यूनिट महांगी करण लाइ नेपरा में दरख़्वास्त दाखिल। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी समूरे मुल्क में बिजली फी यूनिट 2.52 रुपया फी यूनिट महांगी करण जी नेपरा में दरख़्वास्त दाखिल कराई। नेपरा मूजिब CCPA जे दरख़्वास्त ते ॿुधणी 27 अगस्त ते थींदी। मंज़ूरी जी सूरत में वापेदारनि ते STP समेत 41 अरब रुपयनि जो इज़ाफ़े भार पवंदो। कराची में पेट्रोलियम लेवी ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मंशा लाइ जमायत इस्लामी जो 3 ॾींहनि ते गवर्नर हाउस अॻियां धरणो जारी। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, पिशावर ऐं कोटिया में बि गवर्नर हाउसिस अॻियां 3 ॾींहनि खां धरणा लॻल। जमायत इस्लामी अॻवाणनि जो चवणु आहे त पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते टैक्स वसूली बंदि कई वञे। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गैर कानूनी भर्तियुनि जो केस अदालत धुरियुनि खां जवाब तलब करे वरितो। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस अदनान अल करीम मेमण जी सरबराई में आईनी बेंच वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गुज़िरियल 5 सालनि दौरान गैर कानूनी भर्तियुनि ख़िलाफ़ केस जी ॿुधणी कई। अदालत चीफ सेक्रेटरी, लेबर खाते जे सेक्रेटरी ऐं वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जे सेक्रेटरीअ खां 3 हफ़्तनि में जवाब तलब करे वरितो। कराची में कार सवार हथियारबंदनि जे मोटरसाइकिल ते फायरिंग पसंदि जो परणो कंदड़ नारी क़तल। गुलशन हदीद लिंक रोड ते कार सवार हथियारबंदनि मोटरसाइकिल ते फायरिंग करे कुझु वक़्तु अॻु पसंदि जो परणो कंदड़ नारी फातिमा खे क़तल करे छॾियो। फायरिंग जे नतीजे में औरत जे मुड़ुसु अकबर समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94। अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ जीए एफएम 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जिम्मेवारी घुरी सलमान अकरम राजा रिपोर्ट पब्लिक न करण जी खातरी कराई बुधनी 16 सितंबर ताई मुलतवी। पार्लियामानी मामलन वाले वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी है तो पीटीआई पानी के अस्पताल मुंतकिल करण बाबत सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म ते जी जो ती अमल वो वजीर आजम अदालत के फैसले की उबतड़ को भी अख्तियार ना इन फैसले मुल्क में अदलिया की आजादी साबित कर छी है। मुस्लिम लीग नून की क्यादत के भी अदालत में रिलीफ मिलो है तेकर अदालत के फैसलों को एतराम करण घुर्ज अदालत के फैसलों से सियासी रद्द अमल दियण बदर कानूनी रस्त अख्तियार कर वे। पीटीआई पारा पार्टी बानी के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर संदस तिबी मुआइने लाय माहिर डॉक्टर से बधल मेडिकल बोर्ड जोड़ने वाले हुक्म की आज यहां पीटीआई तर्जमान है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुकम्मल है फौरी अमल दरामद की उम्मीद है। कारकुन हामी अस्पताल बाहर गड न थियन जी पीटीआई बानी के इलाज में कें भी किस्म की रुकावट पैदा न थिए। पार्टी बानी के इलाज बाबत अदालती हुक्म से अमल दरामद के अहम समझे थी संदस तिबी सहूलत के यकीनी पढ़ चाहे थी। पीटीआई बानी के जदा वनो हो ओदा वनी चुको है मुख्य लगे तो पेरो बीहर नवाज शरीफ की हुकूमत खिलाफ साजिश थियण शुरू थी वही है। नून लीग के सेनेटर नासिर भट्टो अदालती फैसले से रद्द अमल नासिर भट्टो तो मौजूदा सूरत हाल के सियासी हवाले से भी ढण की जरूरत है हुकूमत खिलाफ कें भी मुबैना साजिश के कामयाब थियण न दिनों वे। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ्तारियों के पाकिस्तान से जोड़ने जो इल्जाम रद्द कर छो भारतीय घरू वजीर जो दवाओं बेबुनियाद करार पढ़े तर्जुमान जो चवण है त भारतीय गिरफ्तारियों पाकिस्तान के इल्जाम सिर्फ अंदरूनी सियासी मकसद हासिल कर लाए प्रोपेगेंडा है। भारत दहशतगर्दन के माली सहकार फराहम करण समेत बेन मुल्क में दहशतगर्दी कराए रो है। कुलभूषण यादव के वाजह सबूत है बेबुनियाद इल्जाम भारतीय दहशतगर्दी तलमी ध्यान हटाए ना सकन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से अमल दरामद बाबत इजलास वज़ीर आज़म पारा नौजवानों के रोजगार का मौका फराहम कर मजबूत और इसराइता कदम यकीनी पाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो हुनरमंद और बासलाहियत नौजवान के बाइज़त रोजगार फराहम कर हुकूमत की पहली तरजीह में शामिल है। मुल्क के समूरन इलाकन खास तौर से बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के रोजगार का मौका फराहम कर खास ध्यान दियण की जरूरत है। सिंध काबीना 25 एकड़ ताई जमीन रखंदड़ कणक के आबादकरण लाए डीएपी सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दई छी। नवन हारियन की रजिस्ट्रेशन और मौजूदा रजिस्ट्रेशन की बीहर तस्दीक की पिण मंजूरी 3,13,000 रजिस्टर्ड हारियन के मजमू तौर 20 अरब रुपये की सब्सिडी फराहम करण जो फैसलो। वडे वजीर सदारत हेठ सिंध काबीना के इजलास में 196 किलोमीटर डिगो नौकोट मिठी इस्लाम कोट नगर पार्कर चिल्हर वाटर सप्लाई सिस्टम पीएचईडी हवाले करण की भी मंजूरी दिनी वही। मिट्टी में आर ओ प्लांट्स की सलाहियत वधाण जो हिदायतू सिंध काबीना बोर्ड मुतासर जिलों में स्टार वॉश प्रोग्राम के माहिदे के मुसवदे की मंजूरी दई छी। पहरे मरल में खैरपुर जामशोरो बदीन ए नौशरो फिरोज में 12-15 लाख मानून के पानी ए सफाई जो सहूलतू फराहम क्यों वेंद। काबीना पफटेक हेडक्वार्टर्स जदीद डेटा सेंटर कायम करण की पिण मंजूरी दिनी जिते एआई हब जदीद फील्ड कोऑर्डिनेशन रूम्स कायम क्या वा मनसूबे 44,49,00,000 रुपये के इजाफी फंड्स की मंजूरी दिनी वही। सीनियर सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन ब्रीफिंग दीदे अटे की फ्लोर मिल्स कीमत 112 रुपया फी किलो मुकर कई है जैसे सख्ती से अमल कराया वो।

टे तहत बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कार्रवाइयों नव दहशतगर्द मारिज व्या सिक्योरिटी जरिए मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस ज्यारत हथनाई ए सोराब में गुजे इतला टे ऑपरेशन किया जै दौरान नव दहशतगर्द मारिजी व्या मारिजी वाल दहशतगर्द वटा वरी विकतार में हथियार भी हथ किया गया। डीजीआई एसपीआर की समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधन से 6150 शागिर्दन शागिर्दियों से बेहक डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कौमी सलामती दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के चैलेंजेस से गालू कई शागिर्दन के सवाल जहा दलील जवाब दिना।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 0301-399-2836।
6: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खातरी कराई बुधनी 16 सितंबर तक मुलतवी।

पार्लियामानी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फज़ल तारिक चौधरी चयो आहे त पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम ते जीअं जो तीअं अमल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म वटि अदालत जे फ़ैसिले जो तड़िको बि इख़्तियार नाहे। हिन फ़ैसिले मुल्क में अदलिया जी आज़ादी साबित करे छॾी आहे। मुस्लिम लीग नून जी क़यादत खे बि अदालतनि मां रिलीफ मिलियो आहे। तंहिं करे अदालतनि जे फ़ैसिलनि जो एतराम करणु घुरिजे। अदालतनि जे फ़ैसिलनि ते सियासी रद अमल ॾियण बदिरां कानूनी रस्तो इख़्तियार कयो वञे। पीटीआई पारां पार्टी बानी खे शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण ऐं संदसि तिबी मुआइने लाइ माहिर डॉक्टरनि ते ॿधल मेडिकल बोर्ड जोड़ण वारे हुकुम जी आजिया। पीटीआई तर्जुमान चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते मुकमल ऐं फौरी अमल दरामद जी उमीद आहे। कारकुन ऐं हामी अस्पताल ॿाहिरां गॾु न थियनि जीअं पीटीआई बानी जे इलाज में कंहिं बि क़िस्म जी रिकॉर्ड पैदा न थिए। पार्टी बानी खे इलाज बाबति अदालती हुकुम ते अमल दरामद खे अहम समझे थी ऐं संदसि तिबी सहूलियतुनि खे यकीनी बणाइण चाहे थी।

0: पहला टेक क्या है नून लीग का आज साहब को नेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से।
1: देखें ये गाँव से जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कुबर के खिलाफ फिर साजिश है।
2: पीटीआई वाणी के जॾहिं वञिणो हो होॾां वञी चुको आहे। मूंखे लॻे थो त हिकु भेरो ॿीहर नवाज़ शरीफ जी हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश थियणु शुरू थी वई आहे। नून लीग जे सेनेटर नासिर भट जो अदालती फ़ैसिले ते रद अमल। नासिर भट चयो त मौजूदा सूरतहाल खे सियासी हवाले सां बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे। हुकूमत ख़िलाफ़ कंहिं बि मुबैना साज़िश खे कामयाब थियणु न ॾिनो वञे। जे यू आई सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त पीटीआई बानी बाबति अदालती फ़ैसिलो जेको अॼु आयो उहो पहिरियां अचणु घुर्जे। हा सूबनि जी हिमायत या मुखालफ़त में का बि लकीर न कढणु घुर्जे। कंहिं मामले ते लकीर कढण बदिरां बहस करे ॾिठो वञे त कहिड़ी शइ मुमकिन आहे ऐं कहिड़ी न। कंहिं बि मामले में लकीर कढण सां सदाई नुक़सान थियो आहे। हुकमरान हिते इतिहाद ऐं आज़ाद कश्मीर में हिकु ॿिए मथां इल्ज़ाम लॻाए रहिया आहिनि। खीसो ख़ाली हुजे ऐं वसीला न हुजनि त अव्हां घर बि नथा हलाए सघो। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय घर वज़ीर जूं दवाऊं बेबुनियाद करार। वॾे तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ़ु अंदरूनी सियासी मक़सदु हासिल करण लाइ प्रोपेगेंडा आहे। भारत दहशतगर्दनि खे माली सहकार फ़राहम करण समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी कराए रहियो आहे। कुलभूषण यादव केस वाज़े सबूत आहे। बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय दहशतगर्दीअ तां आलमी ध्यानु हटाए नथा सघनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत में नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ते अमल दरामद बाबति इजलास। वज़ीर आज़म पारां नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण लाइ मज़बूत ऐं सराहता क़दम यकीनी बणाइण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त हुनरमंद ऐं बासलाहियत नौजवाननि खे बाइज़त रोज़गार फराहम करणु हुकूमत जी पहिरीं तरजीहनि में शामिल आहे। मुल्क जे समूरनि इलाइक़नि ख़ासतौर ते बलूचिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण ते ख़ासि ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे। सिंध काबीना 25 एकड़ ताईं ज़मीन रखंदड़ कणिक जे आबाद करण लाइ DAP सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नवनि हारियुनि जी रजिस्ट्रेशन ऐं मौजूदा रजिस्ट्रेशन जी ॿीहर तस्दीक जी पिणु मंज़ूरी। 13,13,000 रजिस्टर्ड हारियुनि खे मजमूई तौर 20 अरब रुपियनि जी सब्सिडी फराहम करण जो फ़ैसिलो।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03-00-00-27-234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03-01-38-65-453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03-00-32-04-372 आई 02-42-46-01-00
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी भेट हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03-01-399-2836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असीं असां मुखातिब आहियूं जी मेहरापुर एफएम 94 तां प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि साण करे हाज़िर ख़िदमत अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी। समिन जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि, जी वाहे त जहान वाहे। असीं हमेशह इहा ई दुआ ॾींदा आहियूं, तव्हां जिते बि हुजो शाल सदा ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि सिंध जा मशहूरु व मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मुहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में अचनि था। डॉक्टर साहिबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे, छंछर ऐं आचार ते डॉक्टर साहिब जी चेकअप फीस बिल्कुलु मुफ़्त हूंदी आहे, बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था। 0301-21-96-851 नंबर अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर ऐं नोट कराईंदो हलां थो। 0301-21-96-851 याने 0301-21-96-851। डॉक्टर साहब सिंध जा मशहूरु व मारूफ़ डॉक्टर आहिनि, होम्योपैथी कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन। का बि बीमारी लाइलाज नाहे, अव्हांखे मायूस नाहे थियणो। शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अल्लाह ताला जी आहे। डॉक्टर साहिबु इलाजु कंदो आहे, जेके ला इलाज थी करे मरीज़ कराची खां बि मोटी था अचनि, हैदराबाद खां मोटी था अचनि पिया, ॿियनि वॾनि इस्पतालनि मां थी मोटी ईंदा आहिनि। जॾहिं डॉक्टर साहिबु वटि ईंदा आहिनि त अल्लाह ताला डॉक्टर साहिब जे हथ में अहिड़ी का शिफ़ा रखी आहे, जॾहिं डॉक्टर साहिबु पंहिंजो इलाजु शुरू करे थो त उहे सिहतयाब थी वञनि था, शिफ़ायाब थी वञनि था। अल्लाह से उन्हनि खे शिफ़ा अता फ़रमाए थो। गुर्दे जी पथरी हुजे, मसाने जी पथरी हुजे, पिते जी पथरी हुजे, नक जी हॾी वधियल हुजे, गले जा गुदूद वधी वञनि था, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कंदा आहिनि। इन खां अलावा संधनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, गोॾनि जो सूर, कुंदरग जो सूर आहे, नज़र जी कमज़ोरी, कन में सूर आहे या कन जंहिंजा वहनि था, मादे जो सूर आहे, मादे जी अल्सर आहे, गुर्दनि जो इन्फेक्शन आहे, चहिरे जो रंगु सांवरो, चहिरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं या ॿारनि जो कद न वधणु या मोटापे वग़ैरह जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था। 0301-21-96-851 असीं डॉक्टर साहिब सां मुखातिब थींदासीं। डॉक्टर साहिब जूं महिरबानियूं आहिनि, मुहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में अचनि था। डॉक्टर साहिब, सभ खां पहिरियां त असीं अव्हांखे ख़ुशि आमदीद चवंदासीं। ठीकु आहियो, तबियत ठीकु आहे अव्हांजी?
1: अलाह ताला जा सां।
0: अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति ॼाण ॾींदा साईं?
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान जी, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहिरियों त सभु तारीफ़ूं रब पाक जूं, जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो, ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असां प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि कोशिशि कंदा आहियूं त जेके बि असांजा ॿुधंदड़ आहिनि, लिसनर्स आहिनि, या जेके फेसबुक ते असांखे ॾिसंदड़ आहिनि, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी अवेयरनेस तौर ते जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि, उन्हनि जी अवेयरनेस जे लाइ ई प्रोग्राम हूंदो आहे। पोइ कोशिशि कंदा आहियूं त हर हिकु उहा ॻाल्हि जेकी पेशंट खे न हूंदी आहे ख़बर, ऐं पोइ जेकॾहिं हिन प्रोग्राम जे तवसुर सां हुनखे इहो ख़बर पइजी वेंदी आहे त हीअ असांखे तकलीफ़ हिन सबब जे करे थिए थी, त पोइ हू उन हिसाब सां पाण बि फर्स्ट एड ॾेई सघंदा आहिनि ऐं जल्द अज़ जल्द उन डॉक्टर वटि पहुचंदा आहिनि ऐं उते उहे ॾेखारींदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां बीमारियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त बीमारियुनि में जीअं वात जूं खोड़ सारियूं बीमारियूं ख़राबियूं थींदियूं आहिनि, वात पची पवंदो आहे, वात में छाला थी वेंदा आहिनि, उन्हनि जा कहिड़ा असबाब हूंदा आहिनि ऐं उहे छो थींदियूं आहिनि, या जेकॾहिं थी वञनि थियूं त उन्हनि जे लाइ छा करणु घुरिजे, फर्स्ट एड कहिड़ी करणु घुरिजे या दवा कहिड़ी वठणु घुरिजे। त जीअं मां ॻाल्हि कई त जेको मिसाल हिकिड़ो वात पची पए थो त वात में छाला थी पवनि था, उन जा खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि। मिसलनि हिकिड़ो ॾिसो, हिकिड़ी त जेको आहे सो लाइकिन प्लेविस असां हिकिड़ी यानी आटो इम्यूनी डिज़ीज़ आहे जंहिंखे असां आटो इम्यूनी डिज़ीज़ उनखे चइबो आहे, त जॾहिं जेके पंहिंजे हिकिड़ो इम्यूनिटी सिस्टम हूंदो आहे जॾहिं

0: ठीक हाँ खुश आमदी चाहूँ था डाटो दस्ती मना ताल को ठरी मीरवा लगे तो जी जी बिल्कुल अल्लाह ताला खुश रखन दो छा पुछंदा मुजा साईं डॉक्टर साहब का अच्छा चर वारा उन में दर्द निकतो आए जी रंग गोंदी आ मुंडरी आंगुर गोली आ सुबाने ये तमास डॉक्टर साहब के देखारे वनो इन जो इलाज मौजूद आहे थोड़ो लागी तो इलाज कराइंदोस मासियां तो कुछ ही डीहन में खत्म थी इंदो खास जो मसलो ना है या की जो अड़े किस्म जा डॉक्टर साहब बुदाइंदो ता के पाण डॉक्टर साहब अक्सर करे प्रोग्राम में जिक्र कंदो आ 2022 का बाद में खास तौर ते स्किन जा जके चमड़ी जो बीमारियों डड थियो खारिश थी इन में इजाफो थियो आई अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब जेको भी आयो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब थियो इन में छुटकारो पातो थई बुदो एफएम बुदो वधिक डॉक्टर साहब वा के बुदाइंदो ठीक है मुजे साईं जी डॉक्टर साहब
1: जैसे बिल्कुल तुम दुरुस्त चाहिए तो 2022 का पे तो जो सो स्किन जी बीमारियों वो तमाम घणी वी वो इन वक्त जो सो खोड़ सारा फंगल इन्फेक्शन जी अदे हिंसर वार चिरे की गाल कई जैसे अस एलोपेशिया डिजीज चवंदा या उनके फंगल भी चई सके तो उन ट्रीटमेंट भी कामयाब ट्रीटमेंट अस होम्योपैथिक में जो है सो मौजूद है हूँ इतने आम तौर पर थी ये इन अदे जरूर ये टोटका इस्तेमाल कराया हों हजमन वट वेंदन उत जो है सो ये कट डारीन ब्लड कढ़ाई जो है सो वो वरंदो वा एरिया इन्फेक्टेड थी वेंदी है बल्कि जो है सो अंदर इन्फेक्शन घणो थींदो आहे वायरल इन्फेक्शन थी वेंदो आहे सो इन जे करे जेको आहे सो मां उन्हनि भाइरनि खे अदरनि खे या अजड़ियुनि खे झलींदासीं त महिरबानी करे अहिड़नि जेको आहे सो वटि तव्हां न वञो अहिड़ियूं शयूं इस्तेमालु न कयो जंहिंसां तव्हांखे बजाए फ़ाइदे जे नुक़सान थी वञे छो जो ॿिया घरेलू टोटका खोड़ सारा हूंदा आहिनि इहे कट ॾियारणु दंभ ॾियारणु इहो तमामु जेको आहे सो नुक़सानदेह हूंदो आहे यानी बाक़ी तव्हां जेको आहे सो घरेलू ॾिस जे हवाले सां जीअं लसन आहे यानी सिंधी थूम आहे त थूम खे कुटे पेस्ट करे ऐं उहा उन जॻह ते लॻाए सघो था इनशा ताला उन सां बि अलाह ताला उन में शिफ़ा रखी आहे तव्हांखे कुदरती तौर ते यानी मां हिकिड़ी फस्ट एड ॿुधाई आहे इहो इलाज तौर फस्ट एड आहे या बाक़ी ट्रीटमेंट त तमामु ज़रूरी आहे हुनजे लाइ ट्रीटमेंट त बिल्कुलु हुनखे खपे होम्योपैथिक जे हवाले सां कामयाबु ट्रीटमेंट असां ॾींदा आहियूं जेकी अलाह ताला जी महिरबानी सां बिल्कुलु जेको आहे उहो ठीकु थियो महसूस बि न थींदो आहे त कॾहिं हुनखे इहा तकलीफ़ थी हुई
0: प्रोग्राम में ॿियो कॉलर मौजूदु आहे 0301-2196-8051 प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि में पहुचे पियो असांजे स्टूडियो में मौजूदु प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु सिंध जा मशहूरु ऐं मरूफ़ डॉक्टर डॉक्टर जो कम से कम बि 30 साल तजुर्बो आहे 25 खां 30 साल तजुर्बो आहे जो डॉक्टर साहिबु जॾहिं शुरूआत में 2021 में हिते असीं मेहरापुर में आयो त उन टाइम बि डॉक्टर साहिब जो 25 साल तजुर्बो हो त 5-6 साल गुज़री आहिनि यानी हिन साल हिन दफ़े आउं चवंदुसि त डॉक्टर साहिबु जेको एक्सपीरियंस साहिब वो 30 सालनि खां मथे आहे क्रॉस करे वियो आहे हीअ त प्रोग्राम में कॉल जी तरफ़ हलूं भई कॉलर लाइन ते मौजूदु अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: साईं मुंहिंजा कंहिं सां पियो ॻाल्हाए ख़ुश आमदी चवनि था खानवाण जे भाउ खे छा पुछंदा मुंहिंजा साईं डॉक्टर साहिब खां जी मुंहिंजा साईं
2: अर्ज़ कयोसीं पहिरियों बि जेको आहे अर्ज़ु इहो आहे त हाणे हिन जेको इलाज थी सघे त ब्लड प्रेशर बि सही आहे बाक़ी ॿियो को मसइलो को बि न आहे न शुगर आहे न वरी जेको आहे ब्लड प्रेशर आहे
0: अलहमदुल्ला इन जो इलाज भी थी सके तो तांके त 13 साल आ पर को अड़ो मानो 16-17 साल वारो भी अलहमदुल्ला डॉक्टर साहब घुमायो आ बाकी अल्लाह ताला जी हिकड़ी जेका मैन्युफैक्चर आहे उन जी केयर भी नथो करे सके हथ कम नथो करे इनशाला इन में तव्हांजो इहो सुन थियल हूंदो इनशाला तव्हां डॉक्टर साहिब खां रेगुलर मुसलसिल इलाज करायोसि अलाह में उमेद आहे रिज़ल्ट मिलंदो तव्हांखे ईअं ई हिकिड़ो दोस्त डॉक्टर साहिब वटि ईंदो गंभट जो उहो बि ईअं हुनजो बि हथ बि कम न कंदो हो बांह मथे बि न करे सघंदो अलहमदिल्ला डॉक्टर साहिब वटि उहो माण्हू हाणे ईंदो आहे त चवंदो आहे साईं मुंहिंजो हथ बि कम करे थो आङरियूं बि कम कनि थियूं हाणे गंभट मां जेको छॾे करे हिते अचे थो डॉक्टर साहिब वटि इन मां अंदाज़ो लॻायो त अल्लाह ताला जी का देन आहे अलाह ताला जी तरफ़ां का शिफ़ा आहे तॾहिं माण्हू अचनि था डॉक्टर साहिब वटि एतिरी रश ॾिसो हूंदी आहे पर इहे डॉक्टर साहिब जो महिरबानी आहिनि असांजे करे FM ते अचे थो ऐं अव्हां जहिड़े दोस्तनि खे मालूमात ॾियण जे लाइ भई हिन बीमारी खां हीअं बची सघिबो हिन जो ई इलाजु आहे हिन जो ई इलाजु आहे ठीकु आहे साईं वधीक FM ॿुधो डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो जी सर डॉक्टर साहिब
1: जी सर बिल्कुल जैसे पे भी पुछो है तो असो पे अदे के यही जवाब हों तो रूबरू अचो हाँ भी अदे के यही चंदी तो बिल्कुल रूबरू अचो छो जो फॉलेज पैरालाइस यानी पैरालाइज जो बाह थी वे यानी उनमें खोड़ सारी वजूहत होंदियों ब्लड सर्कुलेशन खत्म थी रगू डेमेज थी वन जैसे शिफा अल्लाह ताला के हथ में है पर अड़े किस्म जहाँ जैसे केसिस असा आया तो उनके जैसे दवाओं दीदा तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो बिल्कुल ठीक थी वादा हाँ भी अंडर ऑब्जर्वेशन अस बचार अड़ा पेशेंट आन पर अल्लाह ताला की मेहरबानी से रिसेंटली अज भी एक पेशेंट आयो जो लेडीज पेशेंट हो जो बिल्कुल यो एक बाह जो उन सुन हुई लेकिन हाँ उनकी बाह उ हल्की थी है उनमें इम्प्रूवमेंट अच्छा शुरू थी वही है यो अल्लाह ताला जा लख एहसान है सो अदे के दस दिना से जरूर बिजो जरूर भरू दिखा रहे
0: यही वक्त है कमर्शियल ब्रेक जो दलों था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ गदगद जो बुधना रहो जी मेहरापुर एफएम 94
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
4: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-335-69
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छ नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014514456 आई तौकीर अहमद 03616237।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: नहीं, हम तो लड़े नहीं किसी से, हाथ मांग रहे हैं उनका हक था, उनका लीगल लॉफुल राइट है कि उनका इलाज करवाया जाता है। तो गवर्नमेंट भी लॉ तोड़ रही है आगे से। इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि 80-85% लोग उनके पीछे खड़े हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ से बानी के बिंडी अनदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुक्म दई छो। अदालत पीटीआई बानी के इलाज लाए मेडिकल बोर्ड जोड़ने जो हुक्म दीदे फेल ताई थियल इलाज जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरतो। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल करने की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान और उस्मा खान के इलाज में शरीक रहने की इजाजत। पीटीआई बानी से घर भातियों की हफ्ते में एक भेरों मुलाकात और पुटन से ब भेरों टेलीफोनिक गाल बोल करण जो हुक्म। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करण बाबत बुधनी जो लिखत में हुक्म जारी कर छो। अदालत है कैदी के जेल में होजन बावजूद इंसानी वर्ताव और जरूरी तिब्बी सहूलतों जो हक हासिल है। पीटीआई बानी की सेहत बाबत जान सियासी फायदे ला इस्तेमाल न कर सकबी। बानी के इलाज दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में को भी अवामी बेड न थी। हुक्म की भजकड़ी से डिनल सहूलतों फोरी तौर वापस वी सकन थी। हुकूमत जो पीटीआई बानी के जेल का निजी अस्पताल मुंतकिल करने बाबत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीए जो तीन अमल करने का ऐलान। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करने बाबत सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म ते जीए जो तीन अमल कर वो। वजीर आजम वट अदालत के फैसले की उबतड़ को भी इख्तियार ना है। इन फैसले मुल्क में अदलिया की आजादी साबित कर छी है। अदालतन के फैसलन से सियासी रद्द अमल दियण बदरा कानूनी रस्तो इख्तियार कर वे। वजीर आजम के सियासी मामलों बाबत सलाहकार राणा सनावला है सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो मेरिट से बतल है। पीटीआई सही फोरम से अचण में पा देर कई सीधो रस्तो यो ही हो।

0: सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते पीटीआई बानी सां संदसि भेण नोरीन नियाज़ी जी मुलाक़ात थी ऐं ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। नोरीन नियाज़ी जी पीटीआई बानी खे सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम खां आगाही। ज़रियुनि मूजिबि पीटीआई बानी ऐं नोरीन नियाज़ी जी मुलाक़ात 30 मिंटनि ताईं जारी रही। नोरीन नियाज़ी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल खां सवाइ रवानी। पीटीआई पारां पार्टी बानी खे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण ऐं संदसि तिबी मुआइने लाइ माहिर डॉक्टरनि ते ॿधल मेडिकल बोर्ड जोड़ण वारे हुकुम जी अर्ज़ी आहे। पीटीआई तर्जुमान चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते मुकमल ऐं फौरी अमल दरामद जी उमेद आहे। कारकुन ऐं हामी अस्पताल ॿाहिरां गॾु न थियनि, जीअं पीटीआई बानी जे इलाज में कंहिं बि क़िस्म जी रुकावट पैदा न थिए। पार्टी बानी जे इलाज बाबति अदालती हुकुम ते अमल दरामद खे अहम सम्झे थी ऐं संदसि तिबी सहूलियतुनि खे यकीनी पाइण चाहे थी।
1: पहला टेक क्या है नून लीग का? आज आपको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से।
2: देखें, ये गाँव से जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कुबेर के खिलाफ फिर साजिश है।
0: पीटीआई बानी खे जेॾांहुं वञणो हो होॾां वञी चुको आहे। मूंखे लॻे थो त हिकु भेरो ॿीहर नवाज़ शरीफ जी हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश थियण शुरू थी वई आहे। नून लीग जे सेनेटर नासिर भट्ट जो अदालती फैसले ते रदि अमल। नासिर भट्ट चयो त मौजूदा सूरतहाल खे सियासी हवाले सां बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे। हुकूमत ख़िलाफ़ कंहिं बि मुबैना साज़िश खे कामयाब थियण न ॾिनो वञे। जे यू आई सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त पीटीआई बानी बाबति अदालती फ़ैसिलो जेको अॼु आयो इहो पहिरियां अचणु घुर्जे। हा, सूबनि जी हिमायत या मुखालफ़त में का बि लकीर न कढणु घुर्जे। कंहिं मामले ते लकीर कढण बदिरां बहस करे ॾिठो वञे त कहिड़ी शइ मुमकिन आहे ऐं कहिड़ी न। कंहिं बि मामले में लकीर कढण सां सदाई नुक़सान थियो आहे। हुकमरान हिते इतिहाद ऐं आज़ाद कश्मीर में हिक ॿिए मथां इल्ज़ाम लॻाए रहिया आहिनि। कीसो ख़ाली हुजे ऐं वसीला न हुजनि तव्हां घर बि नथा हलाए सघो।

0: पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय घरूवज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परडे तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान जो इल्ज़ाम सिर्फ़ अंदरूनी सियासी मक़सद हासिल करण लाइ प्रोपेगेंडा आहे। भारत दहशतगर्दनि खे माली सहकार फ़राहम करण समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
7: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
8: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
7: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
8: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
9: 0301-399-2836।
10: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000

0: देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ 20 से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जी एफ एम 88 नेट

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: थियल इलाज जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरतो। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसन, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल करने की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान और उस्मा खान के भी इलाज में शरीक रहने की इजाजत। पीटीआई बानी से गर्भातियों के हफ्ते में एक भेरों मुलाकात और पुटन से ब फेरा टेलीफोनिक गाल बोल करने जो हुक्म। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करने बाबत बुधनी जो लिखित में हुक्म जारी कर छो। अदालत चाहिए है कैदी के जेल में होने बावजूद इंसानी वर्ताव और जरूरी तिबी सहूलतों जो हक हासिल है। पीटीआई बानी की सेहत बाबत जान सियासी फायदे लाए इस्तेमाल न कर सकबी। बानी के इलाज दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में को भी अवामी बेड न थी। हुकुम की भजगड़ी से दिनल सहूलतू फौरी तौर वापस वी सकजन थ। वफाकी हुकूमत पीटीआई बानी की अस्पताल मुंतकली बाबत हुकुम जो नए सिर जायजो वठण लाए अदालत से राबतो करने ऐलान कर छो। कानून वारे वजीर आजम नजीर तारड़ चाहिए है पीटीआई बानी की अस्पताल मुंतकली बाबत हुकुम जो जायजो वरतो वो। अदालती हुकुम जो नए सिर जायजो वठण लाए अदालत से राबतो किया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चाहिए है पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करने बाबत वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चाहिए है पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करने बाबत सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम से जी जो तीय अमल किया। वजीर आजम वट अदालत के फैसले की उबतड़ को भी इख्तियार ना है। इन फैसले मुल्क में अदलिया की आजादी साबित कर छी है। अदालत के फैसलों से सियासी रद्द अमल दियण बदरा कानूनी रस्त इख्तियार किया वे। राणा सनावला चाहिए है सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो मेरिट से बदल है। पीटीआई सही फोरम से अचण में पा देर कई सीधो रस्त इो ही है।

0: सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से पीटीआई बानी से संदस भेण नोरीन न्यासी की मुलाकात सेहत और बेन मामलों से गाल नोरीन न्यासी की पीटीआई बानी के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का आगाही जरिए मुजिब पीटीआई बानी और नोरीन न्यासी की मुलाकात 30 मिनटन तई जारी रही। नोरीन न्यासी मीडिया से गाल बोल का सिवाय रवानी। पीटीआई पारा पार्टी बानी के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण संदस तिबी मायने लाए माहिर डॉक्टर से बदल मेडिकल बोर्ड जोड़ वारे हुक्म की आजियां। पीटीआई तर्जुमान है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुकम्मल ए फौरी अमल दरामद की उम्मीद है। कारकुन ए हामी अस्पताल बहरा गड न थियन जी पीटीआई बानी के इलाज में कें भी किस्म की रुकावट पैदा न थे। पार्टी बानी के इलाज बाबत अदालती हुक्म के अमल दरामद के अहम समझे थी और संदस तिबी सहूलत के यकीनी पाण चाहे थी।
1: पहला टेक क्या है नून लीग का? आज आपको नेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से।
2: देखे ये गाँव से जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कुकूर के खिलाफ फिर साजिश है।
0: पीटीआई बानी के जेडा वंजनो हो ओडा वंजी चुको है। मुख्य लगे तो तक भेरो भी यार नवाज शरीफ की हुकूमत खिलाफ साजिश थियन शुरू थी वया है। नून लीग के सेनेटर नासिर भट्ट जो अदालती फैसले ते रद्द अमल। नासिर भट्ट चयो त मौजूदा सूरत हाल के सियासी हवाले से भी दिसण की जरूरत है। हुकूमत खिलाफ कें भी मुबैना साजिश के कामयाब थियण न दिनो है। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान पीटीआई बानी बाबत अदालती फैसलो जो अजायो यो पहरिया अचण घुर्जे हा। सूबन की हिमायत या मुखालफत में का भी लकीर न करण घुर्जे। कें मामले ते लकीर कढ़ण बदरा बहस करे डिठो वे तो कड़ी शे मुमकिन है कड़ी न। कें भी मामले में लकीर कढ़ण से सदाई नुकसान थो है। हुकुमरान इत इतिहाद आजाद कश्मीर में एक बे मथा इल्जाम लगे रहा है। खीसो खाली हुए वसीला न होजन तो अवां घर भी नथा हलाए सको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गूगल की पाकिस्तान ऑफिस जो इफ्तिताह कर छोड़ो। गूगल के नायब सदर विल्सन और संदस टीम की पाकिस्तान अचण से आजियां। मुलाकात दौरान टेक्नोलॉजी के हथी डेण समेत मुख्तलिफ मामलों से गाल शहबाज शरीफ है तो गूगल दुनिया में मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी है। पाकिस्तान गूगल ला एक अहम और खूबसूरत नए सफर की शुरुआत है। इतने तमाम घना मौके हैं। गूगल के नायब सदर जो चवण है तो गूगल पाकिस्तान लाए डिघे मुद्दे वारे भाईवारी जो ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान भारत में थींद गिरफ्तारिय के पाकिस्तान से जोड़ जो इल्जाम रद्द कर दवाओं बेबुनियाद करार। परडेही तर्जुमान जो चवण है तो भारतीय गिरफ्तारियों और पाकिस्तान से इल्जाम सिर्फ अंदरूनी सियासी मकसद हासिल करने लाए प्रोपेगेंडा है। भारत दहशतगर्दन के माली सहकार फ्राहम करण समेत बेन मुल्क में दहशतगर्दी कराए रो है। कुलभूषण यादव केस वाजे सबूत है। बेबुनियाद इल्जाम भारतीय दहशतगर्दी तथा आलमी ध्यान हटाए नथा सकन। सिंध का पीना 25 एकड़ ताई जमीन रखंदड़ कणक के आबादगर लाए डीएपी सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दई छी। नवन हारियन की रजिस्ट्रेशन ए मौजूदा रजिस्ट्रेशन की बीहर तस्दीक की पिण मंजूरी। 6,13,000 रजिस्टर्ड हारियन के मजमू तौर 20 अरब रुपये की सब्सिडी फराहम करण जो फैसलो। वडे वजीर की सदारत हेठ सिंध काबीना के इजलास में 193 किलोमीटर डिगो नौकोट मिठी इस्लामकोट नंगर पार्कर ए चिलहार वाटर सप्लाई सिस्टम PHED हवाले करण की भी मंजूरी दिनी वही। मिठी में आरओ प्लांट की सलाहियत बढ़ाने जो हिदायतों सिंध काबीना बोर्ड मुतासर जिले में स्टार वॉश प्रोग्राम के माहदे की मुसवदे की मंजूरी दे छी। मरहले में खैरपुर जामशोरो बदीन ए नौशोरो फिरोज में 12 खां 15 लख मान के पानी ए सफाई जो सहूलतों फराहम कई व्यू। काबीना पफटेक हेडक्वार्टर्स ए जदीद डेटा सेंटर कायम करण की पिण मंजूरी दिनी जिते AI हब ए जदीद फील्ड कोऑर्डिनेशन रूम्स कायम किया वा। मनसूबे लाए 44 करोड़ 19 लख रुपये इजाफी फंड की मंजूरी दिनी वही। सीनियर सूबाई वजीर शर्जी ने नाम में ब्रीफिंग दींदे अटे की फ्लोर मिल्स कीमत 112 रुपया फी किलो मुकरर कई है जैसे सख्ती से अमल कराया वो।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ नहीं, अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आरई, 0307-359-2120।
5: असलम अदा।
6: वालेकुम असलम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न? अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
6: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
8: 0301-399-2836।

0: گردے دی پتھری مسانے دی پتھری جو بغیر آپریشن دی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے دی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-238-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छाकजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: न तोड़े या आगे से इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि 80-85% लोग उनके पीछे खड़े हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट तरीकन साहब से बानी के बिंडियन अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने जो हुक्म दे छोड़ो। अदालत पीटी बानी के इलाज लाइ मेडिकल बोर्ड जोड़ने जो हुक्म दीदे हेल्थ ताई थियल इलाज जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरतो। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन, आई स्पेशलिस्ट ए कार्डियोलॉजिस्ट शामिल करने की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान ए उस्मान खान के भी इलाज में शरीक रहने की इजाजत। पीटीआई बानी से गर्भातियों की हफ्ते में एक भेरों मुलाकात ए पुटन से बेरो टेलीफोनिक गाल बोल करने जो हुक्म। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करने बाबत बुधनी जो लिखित में हुक्म जारी कर छोड़ो। अदालत चाहे कैदी के जेल में होजन बावजूद इंसानी वर्ताव ए जरूरी तिबी सहूलत जो हक हासिल है। पीटीआई बानी की सेहत बाबत जान सियासी फायदे लाए इस्तेमाल न कर सकबी। बानी के इलाज दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में को भी अवामी मेड़ न थींदो। हुकुम की भजगड़ी से डिनल सहूलतू फौरी तौर वापस वठी सकजन थियूं।

जेल खां अस्पताल मुंतकली बाबति सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते जीअं जो तीअं अमल करण जो ऐलान कंदड़ हुकूमत जो यू टर्न। फैसले ख़िलाफ़ अपील दाख़िल करण जो ऐलान। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त पीटीआई बानी जी अस्पताल मुंतकली बाबति अदालती हुकुम जो नए सिर जाइज़ो वठण लाइ अदालत सां राब्तो कयो वेंदो। जेलनि में केतिरा ई क़ैदी आहिनि जिन सां सिहत जा मसला आहिनि। छा सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम सभिनी क़ैदियुनि लाइ हूंदो? कानून मूजिब मेडिकल बोर्ड फैसलो कंदो आहे त कैदी जो इलाज अस्पताल अंदर या ॿाहिरि करणो आहे। हुन खां अॻु वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो हो त पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतक़िल करण बाबति सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम ते जीअं जो तीअं अमल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म वटि अदालत जे फ़ैसिले जी उबतड़ को बि इख़्तियार नाहे। राणा सनावला बि चयो हो त सुप्रीम कोर्ट मेरिट ते फ़ैसिलो ॾिनो आहे। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते पीटीआई बानी सां संदसि भेण नोरीन न्याज़ी जी मुलाक़ात। सिहत ऐं ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। नोरीन न्याज़ी जी पीटीआई बानी खे सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम खां आगाही। ज़रियनि मूजिबि पीटीआई बानी ऐं नोरीन न्याज़ी जी मुलाक़ात 30 मिंटनि ताईं जारी रही। नोरीन न्याज़ी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि खां सवाइ रवानी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जीएफएम 94।